0: Well, recent big breaking news coming in at this hour. Let's take you through it. An important update coming in from Glasgow, where the Commonwealth Games are taking place as India makes history in javelin. Neeraj Chopra and Yashveer Singh win the silver and the bronze medal. That's right, Indians have won as many as two medals in javelin for India. We're learning an important update coming in as Neeraj Chopra wins the silver medal for India, as Yashveer Singh wins the bronze medal. So India waking up to good news once again from Glasgow, as in the Commonwealth Games, India has made history when it comes to javelin. Neeraj Chopra has won, in fact, the silver medal, whereas Yashveer Singh has won the bronze medal for the country. Two important wins coming in. Let's also take you through the reactions coming in at this hour.
1: Silver medal hai, par abhi try karenge ki abhi next competitions mein dheere dheere aur badhaye.
2: Nee pressure to kya hai, bas ye hai ki agar 100% fit ho to fir wo fighting spirit zyada rehti hai, matlab ye lagta hai ki ab kuch bhi kar sakte hain. Aur agar matlab aap injury se aa rahe hain to thoda sa soch ke kadam rakhna padta hai, to aaj wahi tha ki thoda मन में डर था, कभी सोच रहा था कि पूरा जोर से मैं भागूं, और कभी लग रहा था कि थोड़ा कंट्रोल में रखूं क्योंकि वेदर कंडीशंस के हिसाब से, वही थोड़ा मिक्स फीलिंग्स थी, और फिर भी थोड़ा ठीक था. मैं नहीं हूं फील्ड पे, अगर इंजरी भी है तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि हाँ पीछे संभालने वाले हैं अभी और अच्छा थ्रो करने वाले हैं, तो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं. अभी 85 प्लस में यशवीर आ गया है, तो अभी हमारे 85 प्लस के काफ़ी अच्छे थ्रोर हो गए. रोहित ने 87 मीटर किया था अभी यहाँ आने से पहले, तो सचिन अच्छा कर रहा है, तो मतलब हमारे वो जूनियर थ्रोअर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो काफ़ी खुशी होती है कि हमारा जेवलिन इतना ग्रो कर रहा है.
3: ये मेरा पहला मेडल है इंटरनेशनल में, और मुझे ज़्यादा खुशी है. मेरे सभी ने सपोर्ट किया है, परिवार ने, पापा, मम्मी, सभी पूरी फैमिली ने, और कंपटीशन बीच में नीरज भाई ने भी सपोर्ट किया है, और अभी ज़्यादा मुझे बहुत खुशी है इस चीज़. अभी सर स्टार्टिंग से जैसे डाउन चल रहा था, बीच में एक 81.33 समथिंग गई थी मेरी थ्रो, तो उस टाइम पे मैंने जैसे रिजल्ट भी देखा था भाई ब्रॉन्ज मेडल 82 मीटर से उसमें चल रहा है, तो फिर मन में ये चल रहा था भाई 82 मीटर अभी ग्राउंड में लगा के आए हैं, कंपटीशन में पर्सनल बेस्ट की थी, तो उससे 82 से ऊपर और अच्छी कर सकता हूँ मैं, तो फिर 500 तक अच्छा जा नहीं रहा था. फिर लास्ट थ्रो में ये था कि भाई देखा जाएगा जो होगा, फिर लास्ट थ्रो अच्छी निकल गई उसमें.
0: For Neeraj Chopra, the Glasgow Games represent a full circle moment. The 28-year-old has often stated that his senior career effectively began at the Commonwealth Games, and returning to this stage after 8 long years, having missed the 2022 Birmingham Games due to a groin injury, was a significant milestone for him. Despite facing difficult conditions characterized by cold, wet weather and windy conditions, Chopra's trademark consistency allowed him to remain a top contender. Neeraj claimed silver with a season best throw of 85.83 meter, while Yash produced a stunning personal best of 85.41 on his final throw to clinch the bronze medal of the night. It gave India a remarkable double podium finish in men's javelin final. The coaches and the support staff also joined the celebrations with the athletes, making it a fitting end to a night that showcased India's growing strength in one of athletics' marquee events. We're tracking some more breaking news coming in from the Commonwealth Games. We're understanding that India has in fact won a double gold medal in judokas. Ashmita Day has won the maiden judo gold in the Commonwealth Games, and Harsh Singh have also won a gold medal for India. Remember that both Ashmita Day and Harsh Singh have made history for the country, as both of them have clinched historic golds for India. So there's some big breaking news coming in at this hour, as India has won a double gold medal in judo, as Ashmita Day as well as Harsh Singh have both won a gold for India and have made history at the Commonwealth Games. Let's turn our attention to more updates coming in at this hour. Prime Minister Narendra Modi has released another video message on his Instagram, this time responding to viral videos of young women abusing him during the Jantar Mantar protest. Saying that the entire country watched what happened, the Prime Minister described the language used as shocking, including abuses directed at his mother.
4: But instead of demanding punishment, the Prime Minister said that he wants to forgive what he called misled youth, adding that legal action is not the solution and that the society must help guide the young onto the right path. Let's also listen in to what the Prime Minister had to say.
5: Hi friends, aaj to man karta hai bas aapse hi baatein karu. Jantar mantar par jo kuch bhi hua, desh aur duniya ne dekha hai. कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया. मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई. न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है. और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भलीभांति समझ सकता हूं. एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का. एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है. उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे. मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं. समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करें, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है. गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है. और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े. देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है. मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं. आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो.
4: Let's take you through more updates coming in at this hour. Now, former AAP councillor Tahir Hussain was sentenced to life imprisonment last evening

0: for the murder of IB officer Ankit Sharma during the 2020 riots in Delhi. Now, in its verdict, the court said that the manner of the crime was of utmost brutality, with savagery that didn't just end with murder. However, the court still didn't find it as the rarest of rare case, warranting a death penalty. Soon after, a war of words broke out between the BJP and the Aam Aadmi Party, with Delhi Minister Kapil Mishra demanding death penalty and even alleging that Tahir was in fact just a part of the conspiracy and that there were many other masterminds. Aam Aadmi Party meanwhile clarified that Tahir Hussain was sacked as soon as the case was registered and blamed Kapil Mishra for the 2020 Delhi riots incitement.
1: जैसे ही इस तरह का आरोप ताहिर हुसैन पे लगा, आम आदमी पार्टी ने उसको तुरंत एक्सपेल किया, पार्टी से निकाल दिया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, ताहिर हुसैन आदमी तो भारतीय जनता पार्टी का ही था। आज तक अगर दिल्ली में दंगे हुए और किसी को राजनीतिक फायदा हुआ है दंगों का, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दंगों का फायदा हुआ है।
2: देखिए, जैसे ही उन पर ये मुकदमा हुआ था, आम आदमी पार्टी ने उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया था। ये सवाल आप लोगों को बीजेपी से पूछना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के मंत्री कपिल मिश्रा अपना दफ्तर उसी घर से चलाते थे जहां का ये इंसिडेंट बताया जा रहा है। आपको ये सवाल बीजेपी से इसलिए भी पूछना चाहिए क्योंकि कपिल मिश्रा ही उनको आम आदमी पार्टी में लेकर आए थे, और आम आदमी पार्टी ने जब उनको ताहिर हुसैन को पार्टी से निकाल दिया, उसके बाद बीजेपी ने ही उनको आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़वाया मुस्तफाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2025 में। तो ये सारे सवाल बीजेपी से आपको जरूर पूछने चाहिए। आम आदमी पार्टी इस तरह की पार्टी नहीं कि कोई भी किसी के ऊपर भी अगर कोई केस हुआ है तो उसको प्रोटेक्शन दे किसी भी तरह की।
3: डेफिनेटली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का क्राइम है, और हम सब लोग जो इस मामले में न्याय की प्रतीक्षा में थे, हम सब ये आशा करते हैं कि जब ये मामला उच्च न्यायालय में जाएगा तब उम्र कैद की इस सजा को फांसी की सजा में बदला जाएगा। दिल्ली में एक बड़ी साजिश की गई थी 2020 में, और अभी उसके न्याय होना शुरू हुआ है, अभी फैसले आने शुरू हुए हैं। इनके बहुत बड़े बड़े मास्टरमाइंड भी हैं, नेता भी हैं, वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, लेखन जगत के लोग भी हैं जो इन साजिशों में शामिल थे। उसका एक हिस्सा ताहिर हुसैन था, लेकिन पूरा न्याय होना अभी बाकी है।
4: देखिए, कानून ने अपना काम किया और कानून के तहत आज ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा हुई है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि उसको फांसी की सजा होगी, लेकिन आज अंकित शर्मा की फैमिली को एक साई ऑफ रिलीफ तो मिला होगा कि 6 साल के बाद अंकित शर्मा के हत्यारों को उम्र कैद की सजा हुई। कानून ने अपना काम किया, लेकिन बहुत सारे सवाल भी पीछे खड़े होते हैं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, या तमाम कांग्रेस के वो नेता हो जिन्होंने धर्म देखकर ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश करी, ताहिर हुसैन को बेचारा बनाने की कोशिश करी, उसको डिफेंड किया, आज उन लोगों का भी पर्दाफाश हुआ है।
5: देखिए, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला है। मैं कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। जिन लोगों ने अपनी संपत्ति का नुकसान किया, अंकित शर्मा ने के परिवार ने अपने बेटे को खोया, आज उनके कष्ट में थोड़ी सी कमी हुई होगी। आज का दिन महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने दिल्ली में दंगों को बढ़ाने का काम किया, अरविंद केजरीवाल जी और उनके नेताओं ने ताहिर हुसैन को प्रश्रय दिया अपनी सांप्रदायिक राजनीति को आगे चलाने के लिए, उन लोगों के लिए आज शर्मिंदगी का दिन है। उन्हें आंख झुकाकर दिल्ली की और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
0: Moving focus to more updates coming in at this hour, well, exiled Bangladeshi writer Tasleema Nasreen returned to Kolkata yesterday after an interval of 19 long years. She was forced to flee Kolkata in 2007 after violent protests erupted against her memoir, which was banned by the then CPIM-led Bengal government for allegedly hurting religious sentiments. The author is said to attend a program protesting fundamentalism at the Rabindra Sadan, और वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी इज एक्सपेक्टेड टू बी इन अटेंडेंस. अपॉन अराइविंग इन कोलकाता, नसरीन सेड दैट हर रिटर्न वाज लाइक अ पर्सनल होमकमिंग. शी एडेड दैट शी वाज फोर्स्ड टू लीव वेस्ट बंगाल बट हैज नेवर स्टॉप्ड होपिंग दैट शी वुड रिटर्न वन डे.
6: आई केम बैक टू कोलकाता. वेस्ट बंगाल इज पार्ट ऑफ बंगाल. So I couldn't go back to my country, Bangladesh, but I came back to Kolkata. I used to call it my second home. So I feel like I came back to my country, to my home, actually. I want to visit College Street. I want to go to Coffee House and the other old places that I used to go. I really like to go to those places.
0: Well, that was slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: Well, recent big breaking news coming in at this hour. Let's take you through it. An important update coming in from Glasgow, where the Commonwealth Games are taking place as India makes history in javelin. Neeraj Chopra and Yashveer Singh win the silver and the bronze medal. That's right, Indians have won as many as 2 medals in javelin for India. We're learning an important update coming in as Neeraj Chopra wins the silver medal for India as Yashveer Singh wins the bronze medal. So India waking up to good news once again from Glasgow, as in the Commonwealth Games, India has made history when it comes to javelin. Neeraj Chopra has won, in fact, the silver medal, whereas Yashveer Singh has won the bronze medal for the country. 2 important wins coming in. Let's also take you through the reactions coming in at this hour.
1: Silver medal hai, par abhi try karenge ki abhi next competitions mein dheere dheere aur badhaye.
2: Nee pressure to kya hai, bas ye hai ki agar 100% fit ho to fir wo fighting spirit zyada rehti hai, matlab ye lagta hai ki ab kuch bhi kar sakte hain. Aur agar matlab aap injury se aa rahe hain to thoda sa soch ke kadam rakhna padta hai, to aaj wahi tha ki thoda मन में डर था, कभी सोच रहा था कि पूरा जोर से मैं भागूं और कभी लग रहा था कि थोड़ा कंट्रोल में रखूं, क्योंकि वेदर कंडीशंस के हिसाब से वही थोड़ा मिक्स फीलिंग्स थी, और फिर भी थोड़ा ठीक था. मैं नहीं हूं फील्ड पे, अगर इंजरी भी है तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि हाँ पीछे संभालने वाले हैं अभी और अच्छा थ्रो करने वाले हैं, तो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं. अभी 85 प्लस में यशवीर आ गया है, तो अभी हमारे 85 प्लस के काफ़ी अच्छे थ्रोर हो गए. रोहित ने 87 मीटर किया था अभी यहाँ आने से पहले, तो सचिन अच्छा कर रहा है, तो मतलब हमारे वो जूनियर थ्रोअर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो काफ़ी खुशी होती है कि हमारा जेवलिन इतना ग्रो कर रहा है.
3: ये मेरा पहला मेडल है इंटरनेशनल में, और मुझे ज़्यादा खुशी है. मेरे सभी ने सपोर्ट किया है, परिवार ने, पापा, मम्मी, सभी पूरी फैमिली ने, और कंपटीशन बीच में नीरज भाई ने भी सपोर्ट किया है, और अभी ज़्यादा मुझे बहुत खुशी है इस चीज़. अभी सर स्टार्टिंग से जैसे डाउन चल रहा था, बीच में एक 81.33 समथिंग गई थी मेरी थ्रो, तो उस टाइम पे मैंने जैसे रिजल्ट भी देखा था, भाई ब्रॉन्ज मेडल 82 मीटर से उसमें चल रहा है, तो फिर मन में ये चल रहा था भाई 82 मीटर अभी ग्राउंड में लगा के आए हैं, कंपटीशन में पर्सनल बेस्ट की थी, तो उससे 82 से ऊपर और अच्छी कर सकता हूँ मैं, तो फिर 500 तक अच्छा जा नहीं रहा था. फिर लास्ट थ्रो में ये था कि भाई देखा जाएगा जो होगा, लास्ट थ्रो अच्छी निकल गई उसमें.
0: For Neeraj Chopra, the Glasgow Games represent a full circle moment. The 28-year-old has often stated that his senior career effectively began at the Commonwealth Games, and returning to this stage after 8 long years, having missed the 2022 Birmingham Games due to a groin injury, was a significant milestone for him. Despite facing difficult conditions characterized by cold, wet weather and windy conditions, Chopra's trademark consistency allowed him to remain a top contender. Neeraj claimed silver with a season best throw of 85.83 meter, while Yash produced a stunning personal best of 85.41 on his final throw to clinch the bronze medal of the night. It gave India a remarkable double podium finish in men's javelin final. The coaches and the support staff also joined the celebrations with the athletes, making it a fitting end to a night that showcased India's growing strength in athletics' marquee events. Well, tracking some more breaking news coming in from the Commonwealth Games, we're understanding that India has in fact won a double gold medal in judokas. Ashmita Dey has won the maiden judo gold in the Commonwealth Games, and Harsh Singh have also won a gold medal for India. Remember that both Ashmita Dey and Harsh Singh have made history for the country, as both of them have clinched historic golds for India. So there's some big breaking news coming in at this hour, as India has won a double gold medal in judo, as Ashmita Dey as well as Harsh Singh have both won a gold for India and have made history at the Commonwealth Games. Let's turn our attention to more updates coming in at this hour. Prime Minister Narendra Modi has released another video message on his Instagram, this time responding to viral videos of young women abusing him during the Jantar Mantar protest. Saying that the entire country watched what happened, the Prime Minister described the language used as shocking, including abuses directed at his mother.
4: But instead of demanding punishment, the Prime Minister said that he wants to forgive what he called misled youth, adding that legal action is not the solution and that the society must help guide the young onto the right path. Let's also listen in to what the Prime Minister had to say.
5: Hi friends, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
4: Let's take you through more updates coming in at this hour. Now, former AAP councillor Tahir Hussain was sentenced to life imprisonment last evening for the murder of IB officer Ankit Sharma during the 2020 riots in Delhi. Now, in its verdict, the court said that the manner of the crime was of utmost brutality, with savagery that didn't just end with murder. However, the court still didn't find it as the rarest of rare case warranting a death penalty. Soon after, a war of words broke out between the BJP and the Aam Aadmi Party, with Delhi Minister Kapil Mishra demanding death penalty and even alleging that Tahir was in fact just a part of the conspiracy and that there were many other masterminds. Aam Aadmi Party meanwhile clarified that Tahir Hussain was sacked as soon as the case was registered and blamed Kapil Mishra for the 2020 Delhi riots incitement.
6: हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, हाई कोर्ट से देर है, देर नहीं है, हाई कोर्ट से मिलेगा, आपको लगता है इंसाफ का कोर्ट एकार ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग।
7: जैसे ही इस तरह का आरोप ताहिर हुसैन पे लगा, आम आदमी पार्टी ने उसको तुरंत एक्सपेल किया, पार्टी से निकाल दिया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, ताहिर हुसैन आदमी तो भारतीय जनता पार्टी का ही था। आज तक अगर दिल्ली में दंगे हुए और किसी को राजनीतिक फायदा हुआ है दंगों का, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दंगों का फायदा हुआ है।
8: देखिए, जैसे ही उन पर ये मुकदमा हुआ था, आम आदमी पार्टी ने उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया था। ये सवाल आप लोगों को बीजेपी से पूछना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के मंत्री कपिल मिश्रा अपना दफ्तर उसी घर से चलाते थे जहां का ये इंसिडेंट बताया जा रहा है। आपको ये सवाल बीजेपी से इसलिए भी पूछना चाहिए क्योंकि कपिल मिश्रा ही उनको आम आदमी पार्टी में लेकर आए थे, और आम आदमी पार्टी ने जब उनको ताहिर हुसैन को पार्टी से निकाल दिया, उसके बाद बीजेपी ने ही उनको आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़वाया मुस्तफाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2025 में। तो ये सारे सवाल बीजेपी से आपको जरूर पूछने चाहिए। आम आदमी पार्टी इस तरह की पार्टी नहीं कि कोई भी किसी के ऊपर भी अगर कोई केस हुआ है तो उसको प्रोटेक्शन दे किसी भी तरह की।
9: डेफिनेटली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का क्राइम है, और हम सब लोग जो इस मामले में न्याय की प्रतीक्षा में थे, हम सभी आशा करते हैं कि जब ये मामला उच्च न्यायालय में जाएगा तब उम्र कैद की इस सजा को फांसी की सजा में बदला जाएगा। दिल्ली में एक बड़ी साजिश की गई थी 2020 में, और अभी उसके न्याय होना शुरू हुआ है, अभी फैसले आने शुरू हुए हैं। इनके बहुत बड़े बड़े मास्टरमाइंड भी हैं, नेता भी हैं, वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, लेखन जगत के लोग भी हैं जो इन साजिशों में शामिल थे। उसका एक हिस्सा ताहिर हुसैन था, लेकिन पूरा न्याय होना अभी बाकी है।
10: देखिए, कानून ने अपना काम किया और कानून के तहत आज ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा हुई है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि उसको फांसी की सजा होगी, लेकिन आज अंकित शर्मा की फैमिली को एक साई ऑफ रिलीफ तो मिला होगा कि 6 साल के बाद अंकित शर्मा के हत्यारों को उम्र कैद की सजा हुई। कानून ने अपना काम किया, लेकिन बहुत सारे सवाल भी पीछे खड़े होते हैं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, या तमाम कांग्रेस के वो नेता हो जिन्होंने धर्म देखकर ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश करी, ताहिर हुसैन को बेचारा बनाने की कोशिश करी, उसको डिफेंड किया, आज उन लोगों का भी पर्दाफाश हुआ है।
11: देखिए, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला है। मैं कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। जिन लोगों ने अपनी संपत्ति का नुकसान किया, अंकित शर्मा ने के परिवार ने अपने बेटे को खोया, आज उनके कष्ट में थोड़ी सी कमी हुई होगी। आज का दिन महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने दिल्ली में दंगों को बढ़ाने का काम किया, अरविंद केजरीवाल जी और उनके नेताओं ने ताहिर हुसैन को प्रश्रय दिया अपनी सांप्रदायिक राजनीति को आगे चलाने के लिए, उन लोगों के लिए आज शर्मिंदगी का दिन है। उन्हें आंख झुकाकर दिल्ली की और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
4: Moving focus to more updates coming in at this hour, well, exiled Bangladeshi writer Taslima Nasreen.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम वीकडेज एट 4 PM
2: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
3: Really?
2: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
4: BOK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं
5: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज BOK
4: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं इसे फायर
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हिट तो है इसकी खास बात
7: वाओ मामा क्या स्वाद है
6: अरे मेरे राजा
8: Launch control, 0 to 100.
9: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
10: This car makes no sense, yet it makes every sense.
11: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
9: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
4: Welcome back. My name is Reeth and you're watching NDTV. Well, India's judo cast has scripted history with a sensational double gold, marking one of the country's biggest achievements in the sport. NDTV has spoken exclusively to the gold medalists, Asmita, Harsh and Yamini, about the journey behind the triumph, the sacrifices that made it possible and what these medals mean for Indian judo. From overcoming tough weight management to dedicating the victory to a late father. Here's our exclusive conversation with the history makers. Listen in.
5: Thank you very much, Golden Girl, Golden Boy, and Yamini for joining me on this special interview on NDTV. Asmita, to you first. Your first reaction on having the first judo Commonwealth gold for India?
6: I'm very happy, ma'am. This gold medal for me, everything.
5: आपको ये उम्मीद था कि आप जब गए हुए थे ग्लासगो कि गोल्ड मेडल लेके ही वापस आएंगे?
6: हाँ मैम, मुझे आशा तो था और मैं इसके लिए बहुत मेहनत भी कर रही थी कि मैं गोल्ड मेडल जीत के जाऊंगी।
5: ओके हर्ष, आपको पूछना चाहती हूँ, मैं दिल्ली से आप बिलोंग करते हैं, आप बताइए कि शुरुआत कैसे हुई आपका जूडो में और कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर किया?
7: शुरुआत मैम स्कूल से ही हुई थी। स्कूल में मैं भला एक घंटा ऐसे स्पोर्ट्स के लिए जूडो खेलता था।
5: वन सेकंड। हर्ष का फ्रेम आ रहा है क्या? मुझे ना पूरा दिखाई नहीं दे रहा है।
8: आ रहा है।
5: ओके ओके राइट, यू कैन कंटिन्यू हर्ष।
7: तो स्कूल में मैंने स्टार्ट करी थी जूडो, जब मैं 7-8 साल का था। ऐसी मतलब एंजॉयमेंट के लिए करी थी स्टार्ट, इसके बाद धीरे धीरे अभी प्रोफेशनली स्टार्ट हो गई कर रही है।
5: ओके, आप दिल्ली की, दिल्ली में स्कूल में पढ़ते थे?
7: हाँ जी हाँ जी, दिल्ली में।
5: ओके, और स्कूल के कोच ने आपको शुरुआत कराया जूडो?
7: हाँ जी हाँ जी, वो हमारे पीटी कोच थे, क्या कहते हैं, सत्यवान सर जी, ने वही मेरे को गेम में लेकर आए।
5: यामिनी, आपको मैं पूछूंगी आज के मैच के बारे में, जो इंग्लिश ओपोनेंट थे आपके वो काफी डिफिकल्ट थे, मैच था और लास्ट मोमेंट तक आप ट्राई करते रहे, अगर पेनल्टी ना मिलता तो शायद कुछ और होता। मैच के बारे में बताइए कि कैसे मोमेंटम स्विंग किया?
8: जब स्टार्टिंग हुई थी तभी से मेरा था कि हाँ मैं जीत सकती हूँ।

0: straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
2: बैठ सकता हूँ आपके साथ? खाइए ना।
1: आप कहाँ से हैं?

0: He wants to forgive what he calls the misled youth, adding that the legal action is not the solution and the society must help guide young people onto the right path. Let's also take you through what the Prime Minister said. Listen in.
1: Hi friends, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
0: Well, that was the Prime Minister's video. We also have a reaction coming in from the Congress. Let's take you through it. We have some big breaking news coming in at this hour as P. Chidambaram, the former union minister, has now questioned the Prime Minister on BJP trolls. Chidambaram has said in High Court that are BJP trolls also forgiven? P. Chidambaram has now questioned BJP over abusive ex-post, saying, and I quote, that has the Honourable Prime Minister also forgiven the BJP trolls who react on X with abusive and filthy comments on posts critical of the government? So an important question raised by, of course, the senior Congress leader and former Union Minister P. Chidambaram, who has questioned the Prime Minister on BJP trolls who react to posts critical of the government with abusive comments. Let's now take you through more breaking news coming in at this hour. Well, the Prime Minister Narendra Modi will visit Andhra Pradesh and Karnataka later today to inaugurate key infrastructure and cultural projects. In Andhra Pradesh, the Prime Minister will inaugurate the Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram, built at a cost of over ₹5,640 crores. Prime Minister is also going to lay the foundation stone of the ASIP semiconductor project at Vishakhapatnam, which, remember, is Andhra Pradesh's first semiconductor manufacturing facility approved under the India Semiconductor Mission. After concluding his Andhra Pradesh visit, the Prime Minister will then travel to Mysuru in Karnataka to inaugurate Swami Vivekananda Cultural Youth Centre. He will also address a public gathering there. The Vivekananda Smaraka commemorates Swami Vivekananda's historic visit to Mysuru in November 1892 during his journey all across India.

0: 7 kg judo event at Glasgow Commonwealth Games 2026. Now, the president has said, and I quote, that your resilience, determination and fighting spirit have made the nation proud. An important update coming in as the Prime Minister too has congratulated the winners, saying that an outstanding silver for Neeraj Chopra in the men's javelin event at Glasgow. The Prime Minister has further gone on to congratulate Chopra by saying that he has once again demonstrated remarkable consistency, composure and spirit. He's even said that Neeraj Chopra's successes have made every Indian proud and has even wished him well for his endeavours ahead. So the Prime Minister as well as the President reacting to the big wins at Glasgow in the Commonwealth Games 2026. We're seeing important reactions coming in as remember India is now winning big at the tournament. Well, India's judokas have scripted history with a sensational double gold, marking one of the country's biggest achievements in the sport. NDTV has spoken exclusively to the gold medalists, Ashmita, Harsh and Yamini, about their journey behind the triumph, the sacrifices that made it possible and what these medals mean for Indian judo. From overcoming tough weight management to dedicating the victory to a late father. Here's their exclusive conversation with the history makers. Listen in.
1: Thank you very much, Golden Girl, Golden Boy, and Yamini for joining me on this special interview on NDTV. Ashmita, to you first. Your first reaction on having the first judo Commonwealth gold for India?
2: I'm very happy, ma'am. This gold medal for me, everything.
1: Aapko ye उम्मीद था कि आप जब गए हुए थे ग्लासगो की गोल्ड मेडल लेके ही वापस आएंगे?
2: हाँ मैम, मुझे आशा तो था और मैं इसके लिए बहुत मेहनत भी कर रही थी कि मैं गोल्ड मेडल जीत के जाऊंगी।
1: ओके हर्ष, आपको पूछना चाहती हूँ, मैं दिल्ली से आप बिलोंग करते हैं, आप बताइए कि शुरुआत कैसे हुई आपका जूडो में और कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर किया?
3: स्कूल में मैंने स्टार्ट करी थी जूडो जब मैं 7-8 साल का था, ऐसी मतलब एंजॉयमेंट के लिए करी थी स्टार्ट, उसके बाद धीरे धीरे अभी प्रोफेशनली स्टार्ट होती कर रही है।
1: ओके, आप दिल्ली की दिल्ली में स्कूल में पढ़ते थे?
3: हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली में।
1: ओके, और स्कूल के कोच ने आपको शुरुआत कराया जूडो?
3: हाँ जी, हाँ जी, हमारे पीटी कोच थे, वो क्या कहते सत्यवान सर जी, वही मेरे को गेम में लेकर आए।
1: यामिनी, आपको मैं पूछूंगी आज के मैच के बारे में, जो इंग्लिश ओपोनेंट थे आपके वो काफी डिफिकल्ट थे, मैच था और लास्ट मोमेंट तक आप ट्राई करते रहे, अगर पेनल्टी ना मिलता तो शायद कुछ और होता, मैच के बारे में बताइए कि कैसे मोमेंटम स्विंग किया?
4: जब स्टार्टिंग हुई थी तभी से मेरा था कि हाँ मैं जीत सकती हूँ फाइट, जब मैंने उसके साथ फाइट किया मुझे लगा कि हाँ ये इतनी स्ट्रांग नहीं है और मैं जीत सकती हूँ, मैं पूरे टाइम खुद से बात कर रही थी हाँ मैं जीत सकती हूँ, आई एम स्ट्रांग। पूरे एंड तक मैंने कोशिश किया, एंड तक मैं और ज्यादा अग्रेसिव करने लगी,
1: अस्मिता मैं आपको पूछूंगी, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स टीम का जो कैंपेन रहा है अभी तक, आप दो गोल्ड मेडल जीते हो, एक सिल्वर मेडल जीते हो, इस कैंपेन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे?
2: History for India.
1: बिल्कुल history for India है, लेकिन ये history historic moment तक पहुंचने के लिए आप लोगों ने काफी time दिया, काफी वक्त दिया, और ऐसा नहीं कि पहले tournament में जाके आप आपका काफी सारा exposure trip रहा, काफी सारे competitions रहे, उसके बारे में हमें बताइए थोड़ा सा process कैसा था to the podium।
2: सब लोगों ने पहले कैंप भी लगाए थे और खेले प्रिपरेशन के लिए, कुछ हम खुद से भी गए हैं, कुछ हमें गवर्नमेंट ने भेजे हैं, तो

0: कॉमनवेल्थ मेडल लाने के लिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बॉम्ब है हमारे लिए और इंडिया के लिए। तो और हमने बहुत डाइटिंग करी है, बहुत वेट मैनेजमेंट किया है, कुछ नहीं खा रहे हैं, ना ज्यादा तीखा खा रहे हैं, ना मीठा खा रहे हैं, इतने महीनों से कुछ सब छोड़ रखा है। ये बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए, एवरी डे सेम टाइम सेम चीज करना रोज रोज, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी है पर अच्छा भी है महिला।
1: Well, that's all for now on The Breakfast Show. On that note, slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: में, और हम सब लोग जो इस मामले में न्याय की प्रतीक्षा में थे, हम सभी आशा करते हैं कि जब ये मामला उच्च न्यायालय में जाएगा तब उम्र कैद की इस सजा को फांसी की सजा में बदला जाएगा। दिल्ली में एक बड़ी साजिश की गई थी 2020 में, और अभी उसके न्याय होना शुरू हुआ है, अभी फैसले आने शुरू हुए हैं। इनके बहुत बड़े बड़े मास्टरमाइंड भी हैं, नेता भी हैं, वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, लेखन जगत के लोग भी हैं जो इन साजिशों में शामिल थे, उसका एक हिस्सा ताहिर हुसैन था, लेकिन पूरा न्याय होना अभी बाकी है।
1: जैसे ही इस तरह का आरोप ताहिर हुसैन पे लगा, आम आदमी पार्टी ने उसको तुरंत एक्सपेल किया, पार्टी से निकाल दिया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, ताहिर हुसैन आदमी तो भारतीय जनता पार्टी का ही था। आज तक अगर दिल्ली में दंगे हुए और किसी को राजनीतिक फायदा हुआ है दंगों का, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दंगों का फायदा हुआ है।
2: कानून ने अपना काम किया और कानून के तहत आज ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा हुई है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि उसको फांसी की सजा होगी, लेकिन आज अंकित शर्मा की फैमिली को एक साई ऑफ रिलीफ तो मिला होगा कि 6 साल के बाद आज अंकित शर्मा के हत्यारों को उम्र कैद की सजा हुई। कानून ने अपना काम किया, लेकिन बहुत सारे सवाल भी पीछे खड़े होते हैं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, या तमाम कांग्रेस के वो नेता हो जिन्होंने धर्म देखकर ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश करी, ताहिर हुसैन को बेचारा बनाने की कोशिश करी, उसको डिफेंड किया, आज उन लोगों का भी पर्दाफाश हुआ है।
3: देखिए, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला है। मैं कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। जिन लोगों ने अपनी संपत्ति का नुकसान किया, अंकित शर्मा ने के परिवार ने अपने बेटे को खोया, आज उनके कष्ट में थोड़ी सी कमी हुई होगी। आज का दिन महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने दिल्ली में दंगों को बढ़ाने का काम किया, अरविंद केजरीवाल जी और उनके नेताओं ने ताहिर हुसैन को प्रश्रय दिया अपनी सांप्रदायिक राजनीति को आगे चलाने के लिए, उन लोगों के लिए आज शर्मिंदगी का दिन है। उन्हें आंख झुकाकर दिल्ली की और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
4: लोगों से सुना और वो है, जो लोग इसके अंदर शामिल थे उनको क्लीन चिट मिली है। ताहिर का नाम कपिल होता तो शायद उसको भी मिल जाती।
5: देखिए, बहुत अफसोस की बात है। हमने ताहिर हुसैन की वो तस्वीर भी देखी जब वो छत पे किस तरीके से पुलिस वालों को कॉल के मदद की गुहार कर लगा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि न्याय नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं जो विक्टिम थे इस दंगों के उनको गुनहगार बना दिया गया, और जो असली कातिल हैं अंकित शर्मा के और असली गुनहगार है, वो आज भी खुले घूम रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में खुले घूम रहे हैं।
6: Let's not turn our attention to West Bengal. Exiled Bangladeshi writer Tasleema Nasreen returned to Kolkata yesterday after an interval of 19 long years. She was forced to flee Kolkata in 2007 after violent protests erupted against her memoir, which was banned by the then CPIM-led Bengal government for allegedly hurting religious sentiments. The author is said to attend a program protesting fundamentalism at Rabindra Sadan, where West Bengal Chief Minister Shivendu Adhikari is expected to be in attendance. Upon arriving in Kolkata, Nasreen said that her return was like a personal homecoming. She added that she was forced to leave West Bengal, but she never stopped hoping that she would return someday.
7: I came back to Kolkata. West Bengal is part of Bengal. So I couldn't go back to my country, Bangladesh, but I came back to Kolkata. I used to call it my second home. So I feel like I came back to my country. To my home, actually. I want to visit College Street, I want to go to Coffee House and the other old places that I used to go. I really like to go to those places.
8: This is a welcome step. This truly shows that Bharatiya Janata Party, we are not communal, contrary to what the opposition says. All these days, the opposition like left and Tṛṇamūl Congress, and also Congress always said BJP is against Muslims.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
4: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
5: वेक्सल डॉग सर, खाइए ना प्लीज।
4: आप कहाँ से हैं?
5: हरियाणा। कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
4: डेढ़ महीने पे।
5: आपकी फैमिली है?
4: कौन?
5: बच्चे हैं?
4: 3 साल।
5: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
4: बहुत।
5: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
4: श्रीनगर तक अलाउड।
5: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
6: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
7: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 PM.
8: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
9: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
10: अरे मेरे राजा।
11: सबका राजा आकर मसाला।
12: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
13: POK ke firing range mein khade hain.
5: Just few inches away is POK.
13: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
3: चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। He has tracked the pulse of power from Washington to Korea, witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
14: This location from Tel Aviv
3: brought clarity right now, right to complex issues.
15: Welcome back, my name is Reeth and you're watching NDTV. Well, India delivered a blockbuster day at the Commonwealth Games, lighting up Glasgow with medals across disciplines. The biggest headline came from the judo arena, where Asmita Deh scripted history with India's maiden Commonwealth Games judo gold, as Harsh joined her to complete a sensational double gold. In athletics, Neeraj Chopra returned with the season's best to claim silver, while Yashvir Singh produced a personal best to grab a bronze in a memorable double podium for India in the men's javelin. Tejaswin Shankar also added another milestone with India's first ever Commonwealth Games decathlon medal, and the all 10 Indian boxers stormed into the finals, guaranteeing a rich medal haul. India now sits on 23 medals, 5 gold, 12 silver and 6 bronze, capping a day to remember for the Indian sport.
16: Silver medal hai, par abhi try karenge ki abhi next competitions mein dheere dheere aur badhaye.
17: Nee pressure to kya hai, bas ye hai ki agar 100% fit ho to fir wo fighting spirit zyada rehti hai, matlab ye lagta hai ki ab kuch bhi kar sakte hain. और अगर मतलब आप इंजरी से आ रहे हैं तो थोड़ा सा सोच सोच के कदम रखना पड़ता है. तो आज वही था कि थोड़ा मन में डर था, कभी सोच रहा था कि पूरा जोर से मैं भागूँ और कभी लग रहा था कि थोड़ा कंट्रोल में रखूँ, क्योंकि वेदर कंडीशंस के हिसाब से वही थोड़ा मिक्स फीलिंग्स थी और फिर भी थोड़ा ठीक था.
18: मेरा पहला मेडल है इंटरनेशनल में और मुझे ज़्यादा खुशी है. मेरे सभी ने सपोर्ट किया है, परिवार ने, पापा, मम्मी, सभी पूरी फैमिली ने, और कंपटीशन बीच में नीरज भाई ने भी सपोर्ट किया है. और अभी ज़्यादा मुझे बहुत खुशी है इस चीज़।
10: अभी सर स्टार्टिंग से जैसे डाउन चल रहा था, बीच में एक 81.33 समथिंग गई थी मेरी थ्रो, तो उस टाइम पे मैंने जैसे रिजल्ट भी देखा था भाई ब्रॉन्ज मेडल 82 मीटर से उसमें चल रहा है, तो फिर मन में ये चल रहा था भाई 82 मीटर अभी ग्राउंड में लगा के आए हैं, कंपटीशन में पर्सनल बेस्ट की थी, तो उससे 82 से ऊपर और अच्छी कर सकता हूँ मैं, तो फिर 500 तक अच्छा जा नहीं रहा था, फिर लास्ट थ्रो में ये था कि भाई देखा जाएगा जो होगा, लास्ट थ्रो अच्छी निकल गई उसमें।
19: Chopra, the Glasgow Games represent a full circle moment. The 28-year-old has often stated that his senior career effectively began at the Commonwealth Games, and returning to this stage after 8 long years, having missed the 2022 Birmingham Games due to a groin injury, was a significant milestone for him. Despite facing difficult conditions characterized by cold, wet weather and windy conditions, Chopra's trademark consistency allowed him to remain a top contender. Neeraj claimed silver with a season best throw of 85.83 meter, while Yash produced a stunning personal best of 85.41 on his final throw to clinch the bronze medal of the night. It gave India a remarkable double podium finish in men's javelin final. The coaches and the support staff also joined the celebrations with the athletes, making it a fitting end to a night that showcased India's growing strength in one of athletics' marquee events.
15: Well, history made barriers broken. NDTV caught up exclusively with India's golden judokas, Ashmita, Harsh and Yamini, as they reflected on the effort and emotion and even determination behind their landmark triumphs. Here's the exclusive conversation. Listen in.
19: Thank you very much, golden girl, golden boy. And Yamini, for joining me on this special interview on NDTV. Ashmita, to you first. Your first reaction on having the first judo Commonwealth gold for India?
20: I'm very happy, ma'am. This gold medal for me, everything.
19: आपको ये उम्मीद था कि आप जब गए हुए थे ग्लासगो कि गोल्ड मेडल लेके ही वापस आएंगे?
20: हाँ मैम, मुझे आशा तो था और मैं इसके लिए बहुत मेहनत भी कर रही थी कि मैं गोल्ड मेडल जीत के जाऊंगी।
19: ओके हर्ष, आपको पूछना चाहती हूँ, मैं दिल्ली से आप बिलोंग करते हैं, आप बताइए कि शुरुआत कैसे हुई आपका जूडो में और कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर किया?
21: स्कूल में मैंने स्टार्ट करी थी जूडो जब मैं 7-8 साल का था, ऐसी मतलब एंजॉयमेंट के लिए करी थी स्टार्ट, इसके बाद धीरे धीरे अभी प्रोफेशनली स्टार्ट होती कर रही है।
19: ओके, आप दिल्ली के दिल्ली में स्कूल में पढ़ते थे?
21: हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली में।
19: ओके, और स्कूल के कोच ने आपको शुरुआत कराया जूडो?
21: हाँ जी, हाँ जी, हमारे पीटी कोच थे, क्या कहते हैं, सत्यवान सर जी, ने वही मेरे को गेम में लेकर आए।
19: यामिनी, आपको मैं पूछूंगी आज के मैच के बारे में, जो इंग्लिश ओपोनेंट थे आपके वो काफी डिफिकल्ट थे, मैच था और लास्ट मोमेंट तक आप ट्राई करते रहे, अगर पेनल्टी ना मिलता तो शायद कुछ और होता, मैच के बारे में बताइए कि कैसे मोमेंटम स्विंग किया?
22: जब स्टार्टिंग हुई थी तभी से मेरा था कि हाँ मैं जीत सकती हूँ फाइट, जब मैंने उसके साथ फाइट किया मुझे लगा कि हाँ ये इतनी स्ट्रांग नहीं है और मैं जीत सकती हूँ, मैं पूरे टाइम खुद से बात कर रही थी हाँ मैं जीत सकती हूँ, आई एम स्ट्रांग, पूरे एंड तक मैंने कोशिश किया, एंड तक मैं और ज्यादा अग्रेसिव करने लगी,
19: अस्मिता मैं आपको पूछूंगी, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स टीम का जो कैंपेन रहा है अभी तक, आप दो गोल्ड मेडल जीते हो, एक सिल्वर मेडल जीते हो, इस कैंपेन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे?
20: History for India.
19: बिल्कुल हिस्ट्री फॉर इंडिया है, लेकिन ये हिस्ट्री हिस्टोरिक मोमेंट तक पहुंचने के लिए आप लोगों ने काफी टाइम दिया, काफी वक्त दिया, और ऐसा नहीं कि पहले टूर्नामेंट में जाके आप
0: आपका काफी सारा एक्सपोजर ट्रिप रहा, काफी सारे कॉम्पिटिशन्स रहे, उसके बारे में हमें बताइए थोड़ा सा, प्रोसेस कैसा था टू द पोडियम?
22: गेम भी लगाए थे और कुछ हम से भी गए हैं, कुछ हमें गवर्नमेंट ने भेजे हैं, तो सिर्फ कॉमनवेल्थ मेडल लाने के लिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट गॉम्बे है हमारे लिए और इंडिया के लिए, तो और हमने बहुत डाइटिंग करी है, बहुत वेट मैनेजमेंट किया है, कुछ नहीं खा रहे हैं, ना ज्यादा तीखा खा रहे हैं, ना मीठा खा रहे हैं, इतने महीनों से कुछ सब छोड़ रखा है, ये बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए, एवरी डे सेम टाइम सेम चीज करना रोज रोज, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी है पर अच्छा भी है लंबा हिला।
15: From a modest training hall in Delhi's Dwarka Moor to the top of the Commonwealth Games podium, Harsh Singh's journey is one of grit, sacrifice and unwavering belief. NDTV in fact even visited his home where the celebrations are in full swing, spoke to his family and the mentor who stood by him every step of the way. Listen in to this conversation.
1: मैं शुरू से मैच जो ना 3-54 से शुरू हुआ था हर्ष का मैच, मैं उसी टाइम से बैठा हुआ था, तो नर्वस तो था ही शुरू में कि कहीं कुछ अच्छा ना हुआ, तो फिर जो ना मैंने किसी को बताया तक नहीं था और उसको अपने नीचे तक नहीं बताया था, मैं मैच देखता रहा, पहली फाइट जो ना उसने निकाल ली, फिर और खुशी हुई, मैं कह चलो ठीक है, दूसरी फाइट निकाली जब और खुशी हुई, तीसरी फाइट जब निकाली जब जाके हमने सबको थोड़ा बताना शुरू किया कि मैं क्या बेटा जो ना खेल रहा आप जो ना देखो, मैं कह ना
2: एक पिता के तौर पर कैसे देख रहे हैं इसे, उन्होंने देश का नाम रोशन कर दिया है, अब
1: मेडल जो निकला है तो देश के लिए जो मेडल लाए हैं उससे जो ना हम हमारी खुशी जो ना दोगुनी हो गई, मैं तो उछल पड़ा था टीवी के आगे बैठा हुआ था, उछल पड़ा, मैं कहा चलो देश के लिए हमारे बेटे ने कुछ किया,
23: मुझे बहुत खुशी है मेरा बेटा देश के लिए मेडल लेके आया है, बहुत ज्यादा खुशी है।
2: आपने जब देखा वो पल तब भावुक हो गए थे आप, खुश थे, कैसा थोड़ा बताइए उसके
23: बारे में? बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे,
1: सबके
23: मतलब कॉल आने लगे थे मेरे पास बहुत ज्यादा, और सब खुश हैं मेरे परिवार में रिश्तेदार वगैरह सब खुश हैं।
2: देखिए हम सब ने देखा कि हर्ष ने जो गोल्ड मेडल जीता वो आपको समर्पित किया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है ये उनकी बात सुनके?
23: बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी है मुझे।
1: हर्ष से जब बात हुई,
23: उसने जब पहले गोल्ड लेके आया था वो गोवा से, मतलब गोल्ड मेडल लेके आया था, तो उसने मेरे से आके पूछा था कि मम्मी आपको क्या चाहिए, मैं क्या दूँ आपको, मैंने बोला बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है तुम्हारा मेडल।
24: मैं जूडो में आया तो ये 8 साल का होगा लगभग, तो फ्लेक्सिबल बहुत था, जुझारू भी था, थोड़ा शरारती भी था जो बच्चे में होता है हाँ, तो टैलेंट तो था उसमें ना, कभी भी कंपटीशन होता था तो मैंने इसको कभी भी फ्लेक्सिबल जो शरीर होगा ना, अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन है तो जानते हैं कि जिसका जितना शरीर फ्लेक्सिबल होगा ना उतनी टेक्निक या दाव वो खाएगा नहीं, और वैसे ही परफॉर्म इसने इसमें भी किया, औरों को टेक्निक लगाई खाई एक भी नहीं इसने जितनी भी बाउट हुई, हालांकि मैंने इसकी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, फाइनली बाउट दी देखी थी मैंने, कि एक भय था कि बच्चे का मैं मतलब रोक नहीं पाऊँगा उस जज्बे को कि हाँ कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि हार जाए, तो उसके फाइनल के बेस में जो ये सीनियर बच्चे थे उन्होंने बताया सर इतना मत हो वो गोल्ड लेके आएगा चिंता, तो मैंने मेरा हौसला दिया उन्होंने, तो मैंने फाइनल फाइट देखी, और जो फाइनल देखी तो उसने मेरा मान रखा या जो भी कहो देश का मान रखा वो 100% दिया उसने अपनी तरफ से, मैं बहुत खुश हूँ।
15: With that, we're speaking to a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
4: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
5: बैठ सकता हूँ सर? खाइए ना प्लीज।
4: आप कहाँ से हैं?
5: हरियाणा।
4: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
4: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
5: 3 साल।
4: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
4: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
5: श्रीनगर तक अलाउड।
4: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है। See, the sacrifice is unbelievable, you know?
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
4: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
5: Front lines of Kargil, the fury of Operation Sindoor,
6: so many attacks,
5: the chaos and cries of disaster zones, the fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
6: It's incredible.
5: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
6: Welcome to Left, Right, and Center.
5: Hard facts.
6: War struck country.
5: Hard questions.
6: In the Ukraine.
5: 30 years of trust.
7: In the Kargil area.
6: North Ukraine.
8: In France. In Italy.
6: At Srinagar.
8: France.
6: Vishnu Shom for NDTV.
5: Vishnu Shom. Only on NDTV.
9: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
10: When others are warming up, I'm raring to go.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधू
1: सो मेनी अटैक्स
0: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स द फाइटर जेट कॉकपिट्स And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
1: War-struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
2: In the Kargil area.
1: North Ukraine. In France. In Italy.
3: At Srinagar.
1: INS Vikrant.
4: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा आर प्योर मसाला।
8: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
9: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस।
10: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
9: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht.

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वो मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.
1: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधू,
2: सो मेनी अटैक्स,
1: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स and the world's most defining interviews.
2: It's incredible.
1: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
3: Welcome to Left, Right and Center.
1: Hard facts.
4: War-struck country.
1: Hard questions.
4: In the Ukraine.
1: 30 years of trust.
5: In the Kargil area.
6: North Ukraine.
7: In France, in Italy.
8: At Srinagar.
9: I am Mr. Trump.
10: Vishnu Shom for NDTV.
1: Vishnu Shom, only on NDTV.
0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे.
11: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल.
12: रियली
11: पैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
1: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े।
2: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7 with me, Tanisha Vasu.

0: the fact, as sir also, you know, lashed out about that, ki we don't take accountability for every person's individual opinions. Exactly that. If I talk about it, ki agar protest mein, if I went to the protest and I did not say anything that was offensive or heinous, so there are there might be, you know, antisocial elements in the protest, but not everybody in the protest is doing the same thing. So why is the entire generation responsible for what is happening over there? Gali di gayi hai to har insaan ne to nahi di hai. Additionally, agar yes sir,
1: I want to say one very simple thing, because I agree with you. Please see इसमें से कितने स्लोगन अब्यूजिव थे और कितने स्लोगन वास्तव में हुए थे.
2: Also, like,
1: let's be honest, yeah, the abusive slogans were a small fraction of the slogans raised. There was no abusive slogan raised on the stage. What Gen Z was doing was having fun. They're doing like Subway Surfer reels and making those reels and mocking the government, and those go more viral. Any smart person with a camera knows कि अगर आप गाली दोगे तो आपकी रील की रीच लिमिट हो जाएगी. तो वो गाली देते नहीं है, आप ढूंढ ढूंढ के उनको ढूंढ रहे हो कि अच्छा चलो गाली दे दी, हम खुश हो गए.
2: I have a contradiction to the point I've made. जैसे सर मैंने आपको बोला कि हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, बट बीइंग एल्डर पीपल, नाउ आई एम नॉट ड्रॉइंग द एज ब्रैकेट हियर, बट बीइंग एल्डर पीपल, डोंट यू थिंक अगर किसी ने वहां पे गाली दी तो आपको उसका रिस्पॉन्स एक अच्छी तरह से करना चाहिए था. इफ सम पर्सन इन एनी एक्शन गेव अब्यूज देयर, तो आपको नहीं लगता आपको उनको समझाना चाहिए था इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मॉब टू देयर प्लेसेस और सेंडिंग देम थ्रेट्स? दैट इज माय कॉन्ट्रडिक्शन. आई इन स्टार्टिंग सेड दैट आई एम making a generalized statement that abuse is wrong from both the sides.
3: Just a question. वही तो कह रहे हैं ना, now it is being said that don't check us, this is the way we will speak from here on.
2: It's not about don't check us. I am asking the question to sir, okay, that if we are making the boundary, then don't you think that if Gen Z did something wrong, तो आपको उनको अच्छे से समझाना चाहिए था. If you are coming on the same ground as us, पहला आप हमको बोल रहे हैं कि आपने गाली दी, that is wrong. I am also accepting it. But आपको नहीं लगता आपको,
3: don't file FIRs. Exactly. If they are abusing, don't come after them with
2: tell us and what
1: also
2: we did wrong.
1: Accountability, no, one second. I just have to say one thing. Accountability has to begin.
4: Language पर नहीं गई है.
1: No, should accountability.
3: नहीं नहीं अब FIR हुई है.
1: No, no, no.
3: Now the abuse is literally.
4: और जहाँ तक ये समझाने की बात, ये थोड़ा समझना होगा कि जो भी ये बात कर रहा है, हम सबके घर में जेंजी बच्चे हैं भाई, उनकी बात हम सुनते भी हैं, उनको सुनाते भी हैं, उनसे समझते भी हैं, लेकिन गालियां सुनना सुनाना ये तो लैंग्वेज नहीं
5: सर, लेकिन लाठी चार्ज नहीं
3: होती है. पीपल गेट देयर बैक अप व्हेन देयर आर पीपल लाइक कंगना रनौत. यू नो आई कोटेड द एग्जांपल ऑफ ऋचा चड्ढा, बट देन ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम यू हैव कंगना रनौत हु इज सेइंग दिस इज जनरेशन गटर. हाउ डज दिस हेल्प? जो दो तीन बच्चे हैं वो आप और भी
4: किसी को भी आप पूरी जनरेशन को एक जिसको कहते हैं ना कि ब्लैंकेट आपने बोल दिया कि ये गटर हो गई, ये बिल्कुल ठीक नहीं है. लेकिन इसका दूसरा पहलू है, अगर कंगना ने मतलब मैं उसको नहीं कह सकता क्योंकि टीवी चैनल एंकर से बातचीत हुई, लेकिन अगर वही बात कही कि आप जो सुनना नहीं चाहते हो, आप कपड़े उतारने की आजादी, गाली देने की आजादी, तो उसकी रेडलाइन कहां ड्रॉ होगी?
1: नहीं, नहीं,
4: फिर तो दोनों तरफ होगा, एक तरफ नहीं हो सकता है ना.
6: नो नो वन सेकेंड, I'm again coming to who has disproportionate power. Where does accountability set in? All of this today is being put in as if the students are on the equal footing with the government. Let me ask you, Padmaja, when those 20 students committed suicide in 2024, I'm not asking Dharmendra Pradhan, the then NTA chief is today principal secretary Chhattisgarh, where was accountability set? Is 2 years not enough to set accountability? This guy's 5,000 rupees apartment, he must be staying with 5 other people. His life is a struggle. His life is a struggle because your kids go abroad to study. You can tell them that your life is a struggle. Which Neta's kids are struggling like this? This is not right. They are the future of our country. They are struggling. They have suffered. And it is the duty of it is the duty of the government to be empathetic. You can't come and use disproportionate force and say, oh, but bro, we are equal. No, we are not equal. The power rests with you.
3: Okay, Dr. Ranganathan,
1: I have to also, no, no, I have to just say one more thing here, right? Let's take accountability from those abusing PM Modi. But when will we take accountability from Sachin Sharma, who ordered the lathi charge and the tear gas? When will we take accountability from the police officer who ordered pellet guns to be used in the national capital?
3: It should be done now. No. Which is why the Supreme Court.
1: Why has it not been done now?
3: Because
1: the government should resign then.
6: Is the Supreme Court
1: running the point of the government?
6: The government running the
1: government. How can you not take action?
3: Okay, just to be factually, factually correct, accountability should be sought, and which is why there are multiple pleas before the Supreme Court, which is now asking. It doesn't help to shout me down. It doesn't help to shout me down. Which is why the Supreme Court is saying there should be an independent investigation, which should see whether there was was violence on the part of the police and whether there was violence on part of the protesters.
1: Until then,
3: both are going to be investigated.
1: Until then, the government should have the grace to suspend the officers who took this action.
3: Okay. How can people have trust Dr. Ranganathan when there is no accountability? And now we've moved beyond the language question also, right? Now we have come to that we had no option to pick up the bricks because nobody was listening to us. And now you are coming after us and turning us into criminals, Dr. Ranganathan.
5: Look, by all means, the people who gathered there, Padmaja, alongside you are brilliant, as you started by saying. But can I say, I'm so disappointed by some of the statements coming out. एक कह रहा है जब तक आप एक कमरे में ना रहो 10 लोगों के साथ आपको सफरिंग नहीं पता चलेगी. ये लॉजिक ये वही है कि जब तक मैं खेत में जाता रहूं जब तक मेरे पास घर पे टॉयलेट ना हो मुझे टॉयलेट की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी. जब तक मेरे सर पे एप्पल ना गिरे मुझे पता नहीं चलेगा कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज है. यही चीज पॉलिटिशियंस यूज करते हैं. एंड एज फार एज अनीश गवांडे सेइंग ही इज नॉर्मलाइजिंग इलीगैलिटी the jantar mantar protest, there was no lathi charge there because that was a legally sanctioned protest. Anish, do not be a riot monger, please. You are going to be a politician. When the march happened, the march was illegal and there were three stages of police action. The first action was section 144 was imposed. The second was tear gas was happening. The third was lathi charge. And the fourth was when less lethal force, aap wahan pe the kya? Were you the police officer sanctioning it? Were you in charge of sanctioning
3: Anish.
5: It? You were one in the mob. You were not the police.
1: No, I was in the mob.
5: Whose problem it was to take care of the situation. Don't talk like somebody who doesn't believe in rule of law or logic or science. I don't know which subjects you study.
1: I have been to multiple protests in my life. This was the first time when I was in the mob. And I had a lathi charge being directed towards me and tear gas being lobbed towards me. Sir, you have to listen now. Without any advance warning, the police is supposed to issue 3 warnings before tear gas is fired. The police did not do so.
5: Who said police
1: charges,
5: did not do
1: sir, so? In lathi charges, the lathi is not supposed to go above the knee. The lathi is supposed to immobilize you. It is not supposed to go all the way up to people's necks. So clearly, this is a failure of the Delhi police's training. This is the failure of any kind of de-escalationary procedure on the Delhi police's part.
5: Says an IPS officer, Anish Gawande.
1: Sir, please see Meera Borwankar. Meera Borwankar, one of the most senior IPS officers in this country, has come out and said that what the Delhi police did was unacceptable.
5: You marched illegally, yes or no?
1: No, this was a failure of policing, sir.
3: Okay, young man.
5: Come up with facts or get a fact checker out because sir, I can't counter each one of these lies.
7: With due respect, sir, पहली बात तो ये है कि चिल्लाने से सत्य बदलने वाला नहीं है पहली चीज. दूसरी बात जो अनीश सर ने कही कि वहां पर आप कैसे जो प्रोटेस्ट में देखे थे कैसी लैंग्वेजेस थी अब्यूसिव लैंग्वेजेस उसको आप साइड कर लीजिए. बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट भी थे वहां पर स्लोगन्स भी थे कि कुछ पुछ प्लीज रिजाइन कर दो ना इसको कोई नहीं बोल रहा है कितने प्यार से हम बोल रहे थे ठीक है. दूसरी बात रही बात अकाउंटेबिलिटी की सर तो अकाउंटेबिलिटी इस देश में
3: सर लेट्स जस्ट कम बैक टू द मेन इशू वी आर टॉकिंग अबाउट द वायलेंस.
7: इट इज द मेन इशू अकाउंटेबिलिटी इज द
3: मेन इशू इज द वायलेंस. इन द वायलेंस yes, there were many people saying kuchu puchu.
7: Yes.
3: But there were also many people who were one with a criminal background, two on camera they are engaging in violence.
7: And there were and few three, people who non-uniform ho karke bachcho ko maar rahe the. Wo log kaun the?
3: Three, remember that the very act of marching towards parliament was an act of breaking the law. So who is accountable for that?
7: Accountable.
3: The law was broken.
7: उस वहां पर पुलिस थी. पुलिस जो है सीधे लाठी चार्ज कर रही है उसके लिए वो अकाउंटेबल नहीं हो रही है और कोई भी कार्य हो रहा है उसके लिए कोई अकाउंटेबल नहीं हो रहा है. यहाँ पर सिर्फ अकाउंटेबिलिटी हमारी
5: जारी वाज द लॉ ब्रोकन और नॉट.
7: सर पहले जो हमारी जो लॉ की बात
5: वाज द लॉ ब्रोकन.
7: सर लॉ किसके लिए बना हुआ है? लॉ हमारे लिए बना हुआ है ना.
5: आस्क दिस गाय
7: सर
5: वाज द लॉ ब्रोकन यस और नो.
7: लॉ को मतलब फॉलो करना केवल हमारा ही दायित्व है या फिर वो स्टेट की थोड़ा उसके बारे में कोई जवाबदेहिता नहीं मांगेंगे. सर दूसरी बात तो ये है कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपद धर्म की हम सर ये आपद धर्म आ गया था हमारे ऊपर क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे सामने दोस्तों को मारा जा रहा है बच्चों को मारा जा रहा है सर फट गया है. सर क्या जो इस्तीफा दिया गया उससे उसका मरहम पट्टी हो जाएगा? उससे मरहम पट्टी नहीं होने वाला. एक और बात है छोटी सी बात यहाँ पे
3: अकाउंटेबिलिटी
7: लॉ को मेंटेन इसका मतलब पुलिस ही फेल की है स्टेट ही फेल की है वहाँ पर.
3: दोस्त लॉ मेंटेन करने के लिए ही तो पहले बैरिकेड तोड़ दी
7: पर बिना किसी
3: फिर आप और आगे बढ़े
7: पेलेट गन
3: फिर टियर गैस चली
7: वार्निंग
3: फिर आप और आगे बढ़े. यू केम क्लोज टू पार्लियामेंट
7: जो है पेलेट गन चला रहे हो बिना किसी वार्निंग के. एक चीज मैम यहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी छोटी सी बात है डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं अकाउंटेबिलिटी की. यहाँ पर हमारे पूर्व मंत्री जी ने इस्तीफा दिया और क्या कहा कि हम अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं. हम जो है इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे देश के यूथ का जो टाइम बर्बाद हो रहा है एंटी नेशनल हमारे देश के यूथ का. सर एक मिनट सर छोटी पूरी बात
4: कंफ्यूजन हो
7: हमें यहाँ पर जो
4: ये जो मार्च था उससे पहले 20 दिनों तक जंतर मंतर पर पीसफुली वही पुलिस उनको एक तरह से कहें कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की। जिस दिन ये पार्लियामेंट मार्च था, हम सब लोग टीवी पर थे और हमें लग रहा था कि 3 घंटे तक जिस तरह से मॉब पार्लियामेंट के इर्द गिर्द था और जिस तरह से वो सिक्योरिटी लैप्सेस से बिल्कुल वहां पर दिल्ली पुलिस फेल हुई, और हम तो कहते हैं कि उसको पहले मैनेज करना चाहिए था, लेकिन जब आप पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ गए, और मैं फिर कह रहा हूं 3 घंटे 4 घंटे तक कोई लीडरशिप नहीं थी सीजेपी की, कोई बताने वाला नहीं था बच्चे कहां जाएंगे, और उसके बाद जब ये सब हुआ, उसके बाद ये घटना, फिर आप नहीं बता सकते कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, पहले किसने क्या किया, पहले पत्थर चले या पहले लाठी चली। और मुझे लगता है कि जब हम ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पुलिस बनाम बच्चे, ये ऐसा नहीं है, इसको समझना पड़ेगा।
3: First, give your name and what do you do?
8: Okay, so I'm Ananjay. I'm currently pursuing my bachelor's at IIT Madras. And I wanna point out that कि लोग बोल रहे हैं कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आई एक्सेप्ट दैट, बट द पॉइंट इज कि पुलिस जो वो एरिया है जंतर मंतर से लेकर संसद तक का, दैट इज वेरी हाईली प्रोटोकॉल्ड एरिया, वहां पे आप ऐसे रेंडमली टहलने नहीं जा सकते। दैट इज वेरी, मैं मानता हूँ जंतर मंतर की उनके पास परमिशन थी, बट जंतर मंतर से आगे का उन्होंने क्या रिटर्न में गवर्नमेंट से लेटर लिया था या नहीं लिया। एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट से लेटर लिया भी था तो पुलिस वालों के ऊपर, मानता हूँ उन्होंने गलत किया, बट एट द सेम टाइम पुलिस वालों के पास ऑर्डर्स थे, मतलब जिन्होंने ऑर्डर के अगेंस्ट किया उनको मैं मान लो उनमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बट अगर उनकी नौकरी है यार, सरकारी नौकरी के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, उनके पास अगर कुछ ऑर्डर्स आए हैं तो दे आर फॉलोइंग देयर ऑर्डर्स, तो जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं दे आर सपोज टू अकाउंटेबल।
6: लेट मी टेक हिज पॉइंट फॉरवर्ड। Only narrative we've heard in the news channels, except NDTV, other news channels, is that there were all these goons here. Somebody's a POSCO accused, somebody's a rape accused, somebody's so-and-so criminal, etc. That's the narrative we've heard. It's clearly put out by the government. Now, question one. I agree with what he said, that this is the most sensitive geography in the history of this country. What were the police doing? Were they snoozing? What was the Home Ministry doing? I'm not asking the Honorable Home Minister. Why did you switch off internet? Because the entire protest was running on an internet. Do you not have common sense? It's basic common sense. Point number two. This is the Delhi that's seen 2 riots. 1 bomb blast. Under the same Home Ministry. Who will take accountability? And last thing. When the Honorable Ex-Education Minister resigned and he came to Parliament, I want each one of you to see the garlanding and the hero's welcome he got. 20 kids died. His daughter studies abroad. I'm not comparing it. He got a hero's welcome. If this is accountability, sorry, accountability, wo hona chahiye tha. Dharmendra Pradhan ji ka waisa swagat. Aap kya inko murkh samajhte hain, sarkar?
4: मुश्किल ये है कि आपने हमें सुना ही नहीं, मैं तो पहले से ही पहले दिन से मैं रिजिग्नेशन मांगने वालों में हूँ, पहले दिन से मैंने कहा कि वो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात बार बार तहसीन कह रहे हैं कि उनके बच्चे अब्रॉड जाते हैं, उनके बच्चे अब्रॉड जाते हैं। अरे इस मूवमेंट का सबसे बड़ा नेता अभिजीत दीपके अब्रॉड से पढ़ के आ रहा है, थोड़ा तो यार तहसीन सोचा करो, कुछ भी बोल देते हो। अभिजीत
2: दीपके इज नॉट करना है, क्योंकि पॉइंट इज नॉट कुछ भी बोल दिया। लेट मी आस्क, और इसमें let me ask a larger question. Is this now a model that we are going to see replicated? And are we now all resigned to the fact that now the pressure group will come from the streets and not from the parliament or the legislative assemblies of India?
9: Good morning, sir. मेरा नाम अर्पण कुमार गिरी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्र हूँ। मेरा ये कहना है कि सर, जैसे हम आप लोग कह रहे हैं कि अचानक से पुलिस आई और लाठी चार्ज कर दी, ऐसा कुछ नहीं ऐसा हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं तो अभिजीत दीपके एयरपोर्ट पर आते हैं, बुक दिखाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस उन्हें पूरा अलाउ करती है। अभिजीत दीपके को लगता है कि उन्हें गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं देगी, 6 जून को उनको परमिशन मिल जाता है। अभिजीत दीपके को लगता है कि ये लॉन्ग टाइम परमिशन के लिए नहीं जाएगी, सॉरी हंगर, तो वो भी मिल जाता है परमिशन। फिर सोनम वांगचुक जी आते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं, उन्हें लगता है कि वो भी 1-2 दिन में हटा लिए जाएंगे, उन्हें भी नहीं होता है। जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है कि हमें इनका
6: ऑर्डर नहीं,
9: हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है कि मुझे इनका डेली मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, ये देखने
6: के। नहीं, वो नहीं था, सॉरी, नो, ही इज रॉन्ग।
9: सर, लेट मी कंप्लीट।
6: बोलिए आप, बोलिए।
9: ओके, तो उसके लिए अगर
6: ऑर्डर बोलिए, ऑर्डर बोलिए ना, क्या था?
9: उन्हें मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए थी।
6: हाँ,
9: ठीक है,
6: हॉस्पिटल ले जाना।
9: चूंकि एक मिनट, जो कि पीआईएल फाइल हुई थी, पीआईएल फाइल हुई थी,
6: ऑर्डर क्या था?
9: ऑर्डर ये था कि मुझे मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, पीआईएल फाइल
4: वही था, स्टेट से भी हो सकती थी,
6: वो तो स्टेट से हो सकती थी।
9: मेरा सवाल ये है कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी सरकार की मांगते हो, ठीक है, तो आप अकाउंटेबिलिटी उन बच्चों के लिए क्यों नहीं मांग रहे हो? अभिजीत जो मार खाए जिन्होंने अनडाउटेडली विकसित बहकाने में आगे मोबिलाइज करने के लिए प्रोटेस्ट में। दूसरी बात, पार्लियामेंट कोई पिकनिक प्लेस नहीं है कि आप बिना एनओसी के आ जाते हो घूमने के लिए यहाँ पे, ठीक है? अगर आप स्टूडेंट हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन मानते हो, एक मिनट, आप कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हो, तो आपको ये भी मानना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज हैं उनके ऑर्डर्स को कम से कम फॉलो कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज ने आपको प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट दिया, आपने 25-26 दिन पूरा प्रोटेस्ट किया, आपको जब मार्च करना था पार्लियामेंट, बस उसके लिए आपको एनओसी नहीं मिला और आप उसके लिए आकर वायलेशन कर लेते
3: हैं। इट इज ऑल्सो इनकम्बेंट ऑन द प्रोटेस्टर्स एंड द ऑर्गेनाइजर्स टू फॉलो द लॉ एंड द बेसिक पॉइंट दैट डॉक्टर रंगनाथन वॉज मेकिंग, दैट इन मार्चिंग टू पार्लियामेंट बियॉन्ड जंतर मंतर

0: resigned, no accountability taken. 2011 में AIEEE का पेपर लीक होता है, no UN minister resigned, no accountability taken. राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट 2008 में लीक होता है, अगेन नो अकाउंटेबिलिटी टेकन, नो यूनियन मिनिस्टर रिजाइंड.
1: नो लिसन, आई एब्सोल्युटली थिंक ऑल गवर्नमेंट्स इन इंडिया हैव लेट डाउन यू पीपल. व्हाई शुड आई डू व्हाट अबाउट री? There is absolutely no reason. It is your life, your future. You think the Karnataka education minister is good? He's terrible. The point is, I hope cockroach protests. If they don't, it is not the responsibility of cockroach to protest.
2: They are
1: students. It is the responsibility of the opposition there to bring down the Congress government. And please do it. I will support you. I think where it is wrong. Let's learn to stop this whataboutery. If people are dying, if people are losing out, we must.
3: Padmaja.
4: I demand equal accountability of everyone. I think not what about?
1: I think you should. And I think, sir, I think you should. I think you're absolutely right. I don't even demand of cockroach. I think the opposition in Karnataka must do it. And if they don't do it, they are failing you. I think the Congress should back up. I totally agree with you.
3: Padmaja, ये कमाल हो गया. पहली बच्ची है जिसने ना तो abusive language की बात की, सिर्फ issues की बात की और तुरंत ये वॉट अबाउटरी करने लगे. वॉट अबाउटरी नहीं है भाई, फैक्ट्स को रखना. ये वॉट अबाउटरी कैसे? और मैं कह रहा हूं बहुत सीरियस है ये. किसी ने अभी कहा कि अगर शायद अनीश ने कहा, बिल्कुल मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर डेमोक्रेसी में किसी को भी लगे, कोई भी एक जनरेशन को लगे कि अगर गवर्नमेंट उनकी नहीं सुन रही है तो ये सरकार के लिए चिंता की बात है. झारखंड में हजारों बच्चे प्रदर्शन कर रहे. झारखंड में देश के दूसरे राज्यों. सवाल यहां ये, क्या हम ओवरऑल एजुकेशन रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं? और जो सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट टाइम है किसी एजुकेशन मिनिस्टर ने पेपर लीक पर रेजिग्नेशन दिया है. हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, रिफॉर्म होंगे.
0: नहीं, ऑफ कोर्स दैट इज अ पॉइंट. बट जब अब गवर्नमेंट ट्राई कर रही है अकाउंटेबिलिटी लेके, आई नो दे हैव नॉट इंट्रोड्यूस अ न्यू बिल, दे हैव जस्ट अमेंडेड द बिल एंड दे आर प्रपोजिंग इट इन द पार्लियामेंट. बट आई बिलीव दैट द ओपोजिशन जो अपोज कर रही थी, अब तो पास हो गया खैर, बट जो अपोज कर रही थी, एंड वन ऑफ द मिनिस्टर सेड ओपोजिशन का काम है अपोज करना. तो यू गाइज आर रियली ओल्डर देन मी, ठीक है? तो बट हमने क्लास 8 की सिविक्स बुक में पढ़ा था, डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन द ओपोजिशन एक्ट्स एज अ वॉच डॉग ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट एज अ ऑब्स्टिकल टू आवर प्रोग्रेस.
1: राइट? सो कैन आई Can I give one?
4: Very interesting one point. I think more people want to come in. Just a second, then I'll go to Dr. Ranganathan. One point.
5: Just one point. Ma'am, two things. First, जब आप बात करते हो ब्लेम, सुनो, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज मैम वी प्ले ब्लेम गेम. हमें हिस्ट्री बहुत पसंद है, फिर तो हम बात करते रह जाएंगे कर्नाटका में से, पंजाब. अरे जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको तो सुधार लो, हम नेक्स्ट पे भी आ जाएंगे. इट इज द ड्यूटी ऑफ मीडिया टू आस्क क्वेश्चन, नॉट गवर्नमेंट. हम सुधार लेंगे उस चीज को. पहले आज जिसकी बात कर रहे हैं उसको तो सुधार लेते हैं मैम, वो बहुत
3: लाइक.
4: You asked a very good point. What's your name?
6: Anurag.
4: Anurag, you're absolutely right. It's the job of the media to ask questions of the government. And what this young lady also said, she's asking questions of the government only.
6: No.
4: But the government of Karnataka
6: choti si baat
4: and
6: hai.
4: The government of Punjab equally accountable Padmaja. Like every other.
1: Padmaja.
4: Just a second. Dr. Ranganathan.
1: Yeah, but
4: it's not a blame game. Pehli baat. Asking for equal accountability. Dr. Ranganathan, yes.
7: Thank you. Look, this is textbook hypocrisy. When the demand, we're not going into history. When Dharmendra Pradhan was the education minister, there were two other sitting education ministers under whom the same malafide happened. Bangarappa of Congress Karnataka and Harjot Singh of AAP Punjab. They continue to be education minister. तो ये कहना पहले इसको करो वो नहीं, खुद hypocrite हो, double standards है, मान लो आगे बढ़ो. Number two, for once I agree with the Gen Z Padmaja, give me 30 seconds. Why? Because yes, this is a cunt. It does not...
8: ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಔರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಬೇಲೂರು ಮಠ ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಗೌತಮಾನಂದ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಮೈಸೂರು ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿದಾನಂದ ಜಿ, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के ट्रस्टी पूज्य स्वामी यादवेंद्रानंद जी, राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री डी के शिव कुमार जी, सांसद यद्वीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार जी, विधायक विजेंद्र येदियुरप्पा जी, के हरीश गौड़ा जी, अन्य महानुभाव, पूज्य संतगण और भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं मैसूर की अधिष्ठात्री देवी माँ चामुंडेश्वरी को प्रणाम करता हूं। अभी दो दिन पहले ही हम सभी ने गुरु पूर्णिमा भी मनाई है। आप सब जानते हैं मेरी यात्रा जहां से शुरू हुई और आज मैं जहां हूं, इसमें रामकृष्ण मिशन का बहुत अहम योगदान है। मैं 3 महीने पहले हावड़ा में बेलूर मठ गया था, सभी पूज्य संतों से सत्संग करने का अवसर मिला था। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे फिर मैसूर में श्री रामकृष्ण आश्रम से जुड़े संतों से, मेरे गुरु बंधुओं से मिलने का, उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। आप सभी की उपस्थिति की वजह से आज मैसूर की इस पवित्र भूमि पर मुझे एक अलग ही ऊर्जा अनुभव हो रही है। मैं आप सभी संतों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। साथियों, मैसूर भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहां के मंदिर, यहां की परंपराएं और उत्सव, मैसूर का दशहरा, यहां के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है। और ये देखकर बहुत संतोष मिलता है कि शहर ने इस विरासत को उसी कुशलता से सहेजा भी है, संवारा भी है। श्री रामकृष्ण आश्रम और स्वामी विवेकानंद जी की स्मृतियां भी मैसूर की विरासत का ही एक समृद्ध हिस्सा है। कुछ देर पहले मैं उस ऐतिहासिक भवन में भी गया था जहां स्वामी विवेकानंद जी ने अपने प्रवास के दौरान कुछ समय बिताया था। कर्नाटका के कितने ही विद्वान और मनीषी इस स्थान से जुड़े रहे हैं। राष्ट्र कवि कुवेंपु जैसे महापुरुष जब मैसूर में थे, उनका भी रामकृष्ण आश्रम से गहरा जुड़ाव था। आज स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर यानी विवेक स्मारक के उद्घाटन के जरिए हम इस मिशन को नया विस्तार दे रहे हैं। इसके लिए मैं श्री रामकृष्ण आश्रम और इसके जुड़े सभी विद्वानों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, व्यक्ति से विभूति का निर्माण एकाएक नहीं होता, इसके लिए हमें जीवन की अनगिनत परीक्षाएं देनी होती है, साधना करनी होती है।

तप करना होता है, खुद को तपाना पड़ता है, खपाना पड़ता है। ख्याति के बाद तो संसार पीछे खड़ा होता है, लेकिन तप के समय महान विभूतियों को पहचानना आसान नहीं होता। जो साधक को तपस्या में पहचानता है वो उसकी सिद्धि का सहभागी भी होता है। इसलिए भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में मैसूर का इतना अहम योगदान था। करीब 130 वर्ष पहले स्वामी जी एक युवा सन्यासी के रूप में भ्रमण करते हुए मैसूर आए थे। तब उनकी प्रसिद्धि वैसी नहीं थी, लेकिन विचार उतने ही ऊंचे थे। उस समय उन्हें जिन लोगों ने पहचाना, जो उनके साथ जुड़े, उनमें से एक प्रमुख नाम मैसूर के तत्कालीन महाराजा के भी था। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में थे तो उन्होंने वहां से मैसूर के तत्कालीन महाराजा को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने स्वयं महाराजा के सहयोग का उल्लेख किया था। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय चेतना को आत्मसात किया था, उन्होंने शास्त्रों को आत्मसात किया था। जो कहते हैं, परम परोपकारार्थ यो जीवति स जीवति, अर्थात वास्तव में वही जीता है जो दूसरों के लिए जीता है। इसी मंत्र पर चलते हुए मैसूर के इस श्री रामकृष्ण आश्रम ने पिछले वर्ष अपने 100 साल पूरे किए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं हो या प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य, श्री रामकृष्ण आश्रम ने स्वामी विवेकानंद जी की विरासत को जीवंत रखा है। मुझे विश्वास है विवेक स्मारक साधकों और श्रद्धालुओं के लिए आत्मिक उत्थान का एक तीर्थ बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा थी शिव ज्ञाने जीव सेवा, यानी जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। हमें इस विवेक स्मारक में इसलिए ऐसे युवाओं को गढ़ना है जिनके लिए समाज और राष्ट्र के हित, गरीब वंचित के दुख अपने सुख दुख से ऊपर हो, जिन युवाओं के लिए राष्ट्र प्रथम ही सर्वोपरि मंत्र हो, मां भारती की सेवा ही जिनका जीवन लक्ष्य हो। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।

0: आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत से बने डिजिटल सॉल्यूशंस दुनिया के अनेक देशों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की नई यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसकी वजह से? भारत के युवा के सामर्थ्य से। आज भारत एआई, डीपटेक, स्पेस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए अध्याय लिख रहा है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। वो मुद्रा लोन के जरिए नई शुरुआत कर रहा है। वो देश की स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का अभियान हो, मेक इन इंडिया का अभियान हो, इसकी सफलता के पीछे भारत के युवाओं की ही ताकत है। साथियों, किसी भी देश में युवाओं का सामर्थ्य तभी उस राष्ट्र की शक्ति बनता है जब उसे सही अवसर मिले, जब उसे सही दिशा मिले और जब उसे अपनी ही धरती पर बड़े सपने देखने, उन्हें पूरा करने का भरोसा मिले। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे शिक्षा संस्थानों की होती है। मुझे खुशी है कि आज भारत में शिक्षण संस्थाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। चार हजार से ज्यादा नई आईटीआई बनाई गई है। 9 नए आईआईएम, 7 नई आईआईटी और 13 नए एम्स भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में एमबीबीएस की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है। साथियों, एक और हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, साथ ही शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक जरूरतों के हिसाब से ढाला जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत के युवाओं को 21वीं सदी के अनुरूप तैयार करने का माध्यम बन रही है। साथियों, स्कूली शिक्षा में भी बड़े स्तर पर काम हुआ है। देश भर में 14,000 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल विकसित किए गए हैं। शिक्षा केवल किताबी न रहे, बच्चों में इनोवेशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, इसके लिए 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब स्थापित हुई है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्र उत्थान के लिए शिक्षा के साथ साथ समानता को भी उतना ही अहम मानते थे। शिक्षा में भेदभाव न हो, अवसरों में भेदभाव न हो, आज ये देश का विजन बन गया है। आज बेटियां भी सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही हैं। एनडीए में बेटियां राष्ट्र के लिए योगदान दे रही है। आज मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई मातृभाषा में करने की सुविधा हो गई है। इससे भाषा के आधार पर अवसरों में होने वाले भेदभाव पर लगाम लग रही है। साथियों, युवा शक्ति का स्वास्थ्य अनुशासित और आत्मविश्वास से भरे रहना उतना ही जरूरी है। जो देश खेलों को महत्व देते हैं, वहां के युवाओं में इन तीनों गुणों का तेजी से विकास होता है। इसलिए आज खेलों को राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण धारा के रूप में देखा जा रहा है। खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स और विंटर गेम्स जैसे आयोजनों ने देश भर के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया है। आज देश भर में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है। खेलो इंडिया सेंटर के माध्यम से सुविधाएं बढ़ रही है। गांवों से लेकर छोटे शहरों तक नई प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है। और साथियों, आज इस अभियान के परिणाम भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है। हमारे खिलाड़ी नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। हमारी बेटियां देश का गौरव बढ़ा रही हैं। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी की तरह हमें विवेक का स्मारक बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। ऐसे स्थान पर मैं हमारे युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं। साथियों, मैसूरु को अक्सर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में स्थान मिला है। मैं इसके लिए यहां के लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। क्या इस अवसर पर हम ये संकल्प ले सकते हैं कि भविष्य में स्वच्छता के संकल्प को निरंतर मजबूत करते रहेंगे? हमें यहां की प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित करना चाहिए। हमें पर्यावरण से जुड़े संकल्प लेने चाहिए। हमें पानी की हर बूंद बचाने के लिए मिशन मोड में काम करना होगा। साथियों, आज ही यहां वाल्मीकि रामायण के कन्नड़ा अनुवाद का विमोचन भी हुआ है। मैं कन्नड़ा भाषा से जुड़ी एक अपील भी करना चाहता हूं। कर्नाटका महान लेखक और कवियों की धरती है। कन्नड़ा भाषी लोग हमेशा से पढ़ने की संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। स्मार्टफोन के इस युग में इस स्वभाव को और बढ़ावा मिलना चाहिए। क्या हम युवा पीढ़ी को कन्नड़ा साहित्य से गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? साथियों, मैसूरु अपने सिल्क, चंदन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। जब भी हम किसी को उपहार दें, तो क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो किसी भारतीय के हाथों और पसीने से बनी चीज हो, इससे हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही एक और परिवार को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरह के भारत का सपना देखा था, उसे पूरा करने का दायित्व आज की पीढ़ी पर है। मुझे विश्वास है विवेका स्मारक इसके लिए एक ऊर्जा स्रोत का काम करेगा। मैं एक बार फिर यहां एकत्र पूज्य संतजनों, गुरुबंधुओं और मैसूर के लोगों को नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Well, that was the address of the Prime Minister who inaugurated Swami Vivekanand Cultural Youth Center. This is a Vivek Smarak at Sri Ramakrishna Ashram in Mysuru. Now, this center that has been inaugurated just right now by the Prime Minister, it aims to promote the value-based education systems that should be put in place. There's also leadership development that the Prime Minister spoke about, personality building among young students, and the manner in which the teachings of Swami Vivekananda continues to be relevant today as well. Vivek Smarika, it commemorates Swami Vivekananda's historic visit to Mysuru in November 1892 during his journey across India. Indian politics and the entire cultural thought during that century has been heavily influenced and was heavily influenced by the thought of Swami Vivekananda, and it continues to be today. There's also a message that came from the Prime Minister about the young people in the country, that how it is important for them to associate with their cultural roots, understand the ideology and the manner in which the Bhartiya Sabhyata has stood its ground for centuries. The Prime Minister also spoke about the handicrafts and the local artisans in the state, especially in Karnataka, where it is very important for ordinary people, ordinary citizens, to understand the importance of this art and make sure that in everyday gifting, in everyday life, it finds its own place. All right, that's the word coming in now from the Prime Minister. My colleague Deepak Bhopanna is joining us on the broadcast to give us more perspective on the story. Deepak, give us some more sense about the Prime Minister's speech, the kind of message it has for the youth, and what importance does this cultural center really hold in Mysuru?
2: Well, this is going to be very, beneficial to the students, is what, many of them have been saying. This is at the Ramakrishna Ashram. This is the Viveka Smaraka. This is a memorial that has been established to commemorate Swami Vivekananda's historic visit. This was in the year 1892, I beg your pardon. This was when he was, of course, journeying in different parts of the country prior to his landmark address in the Parliament of the World Religions in Chicago. That happened, of course, in 1893, a year later. Now, the Prime Minister, of course, is also here going to be visiting the Ramakrishna Ashrama School before he heads back to New Delhi. He, of course, reached a while ago, got a rousing welcome from the crowds that had gathered there. Now, we just, of course, heard the speech of the Prime Minister touching down upon the importance of the cultural roots. More importantly, this center is not just going to be a cultural center. It's also going to be a center where students from across Karnataka, especially in the Mysuru region, can make use of it for various activities, from educational to skill training and much more. Right. So we'll really have to see how it will be used by the students in the days to come. But the Prime Minister, of course, sending out a message loud and clear to everybody who gets there.
1: Deepak, can I please request you to stay with us on the broadcast? Let's quickly once again listen into what the Prime Minister said, and especially the message that he had while speaking in Mysuru for the youth of the nation. And what does this cultural center really hold, and the kind of importance does it hold? Let's listen in once again.
0: आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत से बने डिजिटल सॉल्यूशंस दुनिया के अनेक देशों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की नई यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसकी वजह से? भारत के युवा के सामर्थ्य से। आज भारत एआई, डीप टेक, स्पेस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए अध्याय लिख रहा है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: So there was a lot of thrust in the speech of the Prime Minister on various issues, but I think one thing that stands out is the manner in which he spoke about the youth of the nation, the kind of contribution that they're bringing to the table, and the growing economy and how heavily dependent it is on the contribution of the young of the young people in this country. Deepak continues to stay with us on the broadcast. Deepak, in his characteristic style, he begins from Swami Vivekananda, but the Prime Minister talks about the semiconductor revolution happening in India, the space sector which is growing and evolving, especially the private space sector space. The various facets on which the Prime Minister touched upon had one common thread, and that was the youth of the nation. Deepak.
2: Yes, and particularly this center that the Prime Minister, of course, is inaugurating, this is dedicated to the youth. And you would, of course, expect him to touch down upon various topics that would relate and connect to the youth. And talking about, various sectors in which the youngsters, of course, can participate, which, of course, would also lead to the development of the country overall. So it is, of course, going to be a place that many students, youngsters can benefit from. How well it will be utilized in the days to come is something that remains.
1: Right, that's something that's a wait and watch. But Deepak, also give us a sense about what this cultural center really entails. What kind of facilities it's going to provide to the young people? What kind of innovation programs it's going to run that the Prime Minister spoke about?
2: It's definitely, like I said, it's something that is aimed at benefiting students overall. This was established at the historic Niranjana Math. The Viveka Smaraka, of course, is spread across 81,000 square feet. So it's a huge area that we are, first of all, talking about. It houses a 4D experience center, I'm told, an exhibition hall. It also has an amphitheater, seating capacity of about 700 there. There are multiple classrooms, conference rooms, a library, reading room. There's also, also facilities available for meditation and yoga. And this center includes dedicated facilities, I'm told, for students who are preparing for even competitive examinations. So while, of course, there are many students who come from rural backgrounds, probably do not have the kind of facilities, access to books, access to areas where they can study with a lot of peace of mind, probably even go meditate, learn ways to, of course, calm their heads ahead of examinations. All of this, of course, would be of great use to the students. We are expecting, at least by the data that we are getting right now, at least about 10,000 students from various education institutions nearby to this particular ashram to be benefited overall.
1: Thank you, Deepak, for joining us on the broadcast and putting it in detail about what this entire center is about, what kind of facilities it brings to the table, and how it can help the youth of the nation to contribute effectively to India's growing economy. Now, Prime Minister Narendra Modi has released another video on Instagram, this time responding to the viral videos of young women abusing him during the Jantar Mantar protests. Saying that the entire country watched what happened, the Prime Minister described the language used shocking, including abuses directed at his mother. But instead of demanding punishment, Prime Minister said he wants to forgive what he called the misled youth, adding that legal action is not the solution and that society must help guide young people onto the right path.
0: Hi friends, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
3: अलांटी प्रधानमंत्री ने चाला मंदी आयन मीद माटलंटा उंटे అన్ని అనకూడని మాటలు అంటా ఉంటే నా గుండె కదిలించేసింది, నా కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి, బాధ వచ్చింది. దేశం కోసం కష్టపడే వారికి ఇవా చివరికి మనం ఇచ్చేదేం? కొత్త తరానికి ఏం తెలుసు? ఆయన పడ్డ కష్టం, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు మన ప్రధానమంత్రి గారు. ఈరోజు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి మనకి, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు. శత్రు దేశాలు మన అభివృద్ధికి ఈర్ష్యపడే పశ్చిమ దేశాలు వీటన్నిటినీ తట్టుకొని ఒకవైపు విదేశాల్లో ఉండే శత్రువులతో పోరాడాలి, దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్దామంటే అంతర్గత శత్రువులతో పోరాడాలి. అలాంటి వ్యక్తికి మనం ఇవ్వగలిగేది కేవలం మేమున్నాం మీ వెంట, మీ మీద మాట పడితే అది మా మీద పడ్డట్టే, అదే మన వారికి ఇవ్వాల్సింది.
1: And Prime Minister Modi's video message saying that he has forgiven the students who abused him during the Jantar Mantar protest has triggered a full-blown political showdown. In the video, BJP and its allies have rallied behind the remarks, with NCP calling the message an act of magnanimity and saying that the country's youth need direction, not condemnation. But the opposition has hit back sharply. Congress says that the issue is not about Prime Minister Modi's pardon, but about why lakhs of students felt unheard and pushed to such anger in the first place. Congress leader P. Chidambaram questioned whether Prime Minister would also forgive the abusive BJP trolls online. Shiv Sena UBT asked who had given and who had sought any kind of forgiveness from the Prime Minister, insisting that the students were fighting for their rights and for justice.
4: पहिली गोष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांवरती ही वेळ ज्यांनी आणली त्या मोदीजीने आणि अमित शहानी विद्यार्थ्यांची आणि विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांची माफी मागितली पाहिजे. याचं कारण ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ताटीला खिळे लावून मारण्यात आलं, त्यांच्यावरती सऱ्यांच्या बंदुकीने हल्ला केला गेला, अश्रुधूर सोडला गेला, एवढंच नाही तर अत्यंत वाईट पद्धतीने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले. ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते. ज्या मुलांनी नीटच्या म्हणजे काय बोल म्हणजे आपण ऐकायला सुद्धा अंगावरती शहारे येत होते तर त्या मुलांचे भोगले आणि त्यांची मागणी काय आहे की शिक्षण पद्धतीत सुधार. साधी मागणी होती, जे तुम्ही आत्ता करताय ते तुम्ही पहिल्या दिवशी त्यांच्याशी बोलून करू शकत होतात, पण तुम्हाला अतिरेक्यांशी बोलायला पाहिजे, पाकिस्तानांशी बोलायला काय वाटत नाही. पण आपल्याच देशाचे जे भाग्यविधाते आहेत त्यांना तुम्ही झुरळ म्हणताय, त्यांना तुम्ही भरकटलेले म्हणताय, काय पुढे देश चालणार कसा.
5: के हमारे देश के बच्चे हमारा भविष्य भी है और युवा अवस्था में कई बार उत्साह में जोश में कोई ना कोई किसी के वजह से कुछ बातें बयान जो उनके जुबान से निकल जाते हैं. मोदी जी ने यही कहा है कि मुझे मेरे बच्चों को माफ़ करना इसमें कोई छोटापन नहीं लगता है और ये मैं समझता हूँ कि एक बड़प्पन है उनका. और देश हमारा जो है ये लोकतांत्रिक तरीके से ही चल सकता है, सभी को साथ में लेकर हम आगे बढ़ेंगे तभी देश का भी भला होगा.
6: किसने कहा कि विद्यार्थियों ने कहा कि हमें माफ करिए? मैंने तो नहीं देखा कि किसी विद्यार्थी ने कहा है कि मोदी जी हमें माफ करिए. विद्यार्थी अपने हिम्मत पर जंतर मंतर पर आए, देश की सड़क पर आए और अपने न्याय और अपने हक के लिए उसने बहुत बड़ी जंग छेड़ी और वो जीत गए. सरकार हार गई है, सरकार डर गई है, सरकार सदन से पार्लियामेंट से भाग गई है, तो आपके पास कौन आया था हाथ जोड़कर कि हमें माफ करिए? या अपने आप माफ कर रहे हो? किसने माफी मांगी आपसे?
7: ये आंदोलन ककरोच के नाम पर जो है, जैसा नाम है वैसा काम है. जिन 10,000 बच्चों को रास्ता में उतार करके उनसे बदतमीजी कराया गया, उनका संस्कार खराब किया गया, उसका माँ बाप भी आज शर्मिंदा है, वो बच्चे भी खुद रो रहे हैं कि गलत किया हम लोगों ने, हमारे हाथ से गलत काम हो गया है. लेकिन जिन्होंने कराया है उनका तो कमर में रस्सी लगना चाहिए कि आगे इस प्रकार भारत के जो आंदोलन को कोई कलुषित ना करे.
1: Now the controversy over independent MP Pappu Yadav's parliament skit on the alleged Chanda Chori has intensified with multiple complaints, an FIR and protests. A complaint has been filed in Delhi by BJP MP Bansuri Swaraj alleging that the skit hurt religious sentiments. A separate complaint by seers and lawyers in Varanasi has also led to an FIR being registered. The Vishwa Hindu Parishad has strongly condemned it. VHP President Alok Kumar accused the opposition of mocking a sacred national cause. Meanwhile, students have erupted in multiple states. VHP workers staged demonstrations in Lucknow with protesters condemning the act and burning his effigy.
8: जिन लोगों ने कभी राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए एक रुपया भी नहीं दिया, वो वहां पैसे डालने के लिए इकट्ठा होते और फिर वो साधु जिसको बनाया है वो उन पैसों को लेके भाग जाता है. ये आक्रमण भारत की सारी साधु शक्ति पर है. साधु शक्ति सड़क पर उतरेगी और पूरे भारत में इतना बड़ा प्रतिकार होगा इसका, जिसकी आंच को ये लोग झेल नहीं पाएंगे.
1: With that, it's a wrap on this edition. For more news and updates, you can log on to our website, ndtv.com. Thank you for watching.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।

0: स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: बाइंडिंग, चार लोगों के पास है
1: कुछ इससे भी अनोखा।
0: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: POK के firing range में खड़े हैं।
4: Just few inches away is POK.
3: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
6: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
7: रियली?
6: पैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैंगर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम, एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम। Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
5: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज। From the newsroom to the studio to the thick of political action.
8: TV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially in the villages of West Bengal.
5: When stories have impact.
9: Padmajal Joshi, managing editor and prime time anchor.
5: Then news has influence. The buck stops here with Padmaja Joshi.
8: Your work is being watched by people. You think that you're making an impact in this time. I think that's really a huge validation, very rewarding. And I'm pretty certain that Team NDTV will go from strength to strength.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejig. Remember, this is also a district that has been plagued by communal violence. Come to some of the sabhas that the BJP is also organizing, especially...
1: Good evening, hello and welcome. You're watching NETV 24/7. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines first. Prime Minister in Mysuru sends a message to the youth, says youngsters must be guided and that youth is driving the progress of the country. An NSA makes a fervent appeal to the young people of India to dedicate themselves completely to nation building, stating that a rare window of opportunity has opened in the country's history that must not be allowed to slip away. And the Kaveri water row has intensified as Karnataka farmers' protests in Mandya are raising Go Back Vijay slogans. Screenings of Vijay new movie are cancelled at several theatres, while Stalin urges Chief Minister to avoid visiting Karnataka and resolve the Mekedatu issue through legal means. Farooq Abdullah seeks probe into the Kulgam terror attack, questions its timing amid renewed demand for Jammu and Kashmir statehood. Omar releases an ex-Russia of Rs 10 lakh for the families of the two terror attack victims. JNK LG Manoj Sinha chairs a key security meeting. Heavy rains continue to lash several parts of southern Gujarat, inundating low-lying areas, disrupting daily life and prompting authorities to intensify emergency measures after IMD issued a red alert for 30 districts. And a big boost to India-China trade ties. The historic Silk Route via Sikkim reopens after 6 years, reviving cross-border commerce. The development is seen as a positive step in India-China bilateral ties. Trade through the Nathula first began on the 6th of July 2006. It was suspended during the pandemic. Prime Minister Narendra Modi late last night released another video message on Instagram. Now this time responding to the viral videos of young women abusing him during the Jantar Mantar protests. He also said that the entire country watched what happened, and the Prime Minister described the language used as shocking, including abuses directed at his mother. But instead of demanding punishment, Prime Minister said he wants to forgive what he called the misled youth, adding that legal action is not the solution and the society must help and guide young people onto the right path.
2: Hi friends, aaj to man karta hai bas aapse hi baatein karu. Jantar Mantar par jo kuch bhi hua, desh aur duniya ne dekha hai. Kuch shararti bachchon ne bhaddi bhaddi galiyan boli. किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया. मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई. न जाने कितना भद्दा स्वरूप था. लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है. और यही तो बचपना है. और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं. एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं. लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का. एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है. उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे. मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं. समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है. कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है, और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
3: विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है, वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर वो, कि अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है, तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा, मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके, तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।
4: అలాంటి ప్రధానమంత్రిని చాలామంది ఆయన మీద మాట్లాడుతూ ఉంటే, ఆయన్ని అనకూడని మాట్లాడుతూ ఉంటే నా గుండె కదిలించేసింది, నా కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి, బాధ వచ్చింది. దేశం కోసం కష్టపడేవారికి ఇవా చివరికి మనం ఇచ్చేదేం? కొత్త తరానికి ఏం తెలుసు? ఆయన పడ్డ కష్టం, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు మన ప్రధానమంత్రి గారు. ఈరోజు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి మనకి, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు. శత్రు దేశాలు, మన అభివృద్ధికి ఈర్ష్యపడే పశ్చిమ దేశాలు, వీటన్నిటినీ తట్టుకొని ఒకవైపు విదేశాల్లో ఉండే శత్రువులతో పోరాడాలి, దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్దామంటే అంతర్గత శత్రువులతో పోరాడాలి. అలాంటి వ్యక్తికి మనం ఇవ్వగలిగేది కేవలం మేము ఉన్నాం మీ వెంట, మీ మీద మాట పడితే అది మా మీద పడ్డట్టే, అదే మన వారికి ఇవ్వాల్సింది.
1: Prime Minister Modi's video message saying that he has forgiven the students who abused him during the Jantar Mantar protest has triggered a full-blown political showdown. In the video, BJP and its allies have rallied behind the remarks, with NCP calling the message an act of magnanimity and saying that the country's youth need direction, not punishment. Opposition has hit back sharply. Congress says that the issue is not about Prime Minister Modi's pardon, but about why lakhs of students felt unheard and pushed to such anger in the first place. Congress leader P. Chidambaram questioned whether Prime Minister Modi would also forgive the abusive BJP trolls online. Shiv Sena UBT asked who had even sought forgiveness, insisting that the students were fighting for justice.
5: त्या मोदीजीने आणि अमित शहाने विद्यार्थ्यांची आणि विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांची माफी मागितली पाहिजे. याचं कारण ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ताटीला खिळे लावून मारण्यात आलं, त्यांच्यावरती छऱ्यांच्या बंदुकीने हल्ला केला गेला, अश्रुधूर सोडला गेला, एवढंच नाही तर अत्यंत वाईट पद्धतीने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले. ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसा तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते. ज्या मुलांनी नीटच्या म्हणजे काय बोल म्हणजे आपण ऐकायला सुद्धा अंगावरती शहर येत होते, तर त्या मुलांचे भोगले आणि त्यांची मागणी काय आहे की शिक्षण पद्धतीत सुधार. साधी मागणी होती, जे तुम्ही आत्ता करताय ते तुम्ही पहिल्या दिवशी त्यांच्याशी बोलून करू शकत होतात, पण तुम्हाला अतिरेक्यांशी बोलायला पाहिजे, पाकिस्तानांशी बोलायला काय वाटत नाही, पण आपल्याच देशाचे जे भाग्यविधाते आहेत त्यांना तुम्ही झुरळ म्हणताय, त्यांना तुम्ही भरकटलेले म्हणताय, काय पुढे देश चालणार कसा?
1: And Prime Minister Modi was in Mysuru, Karnataka to inaugurate Vivek Smarak. On the backdrop of the Gen Z protest, Prime Minister highlighted the role of India's youth

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK.
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं. Is it fire?
2: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे.
3: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल.
4: रियली
3: पैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम, एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम. हेलो एंड वेलकम टू

0: To the studio. To the thick of political action.
1: Now watching NDTV 24/7. The hope is that beyond...
2: Welcome back. A major anti-terror operation is underway in Jammu and Kashmir's Kulgam after terrorists targeted migrant workers at a brick kiln. Killing two labourers from Chhattisgarh, former JNK chief minister has made explosive claim about the attack and asked that he doesn't know why this happens only when we ask for restoration of statehood. Security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to trace the backed terror outfit Lashkar-e-Taiba, with operatives Latif Bhatt and Waris emerging as key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of Rs 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
3: और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले
4: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है
3: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट हुड मांग रहे
5: हैं अब ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें
6: नहीं क्या करूं मेरे पास अल्फाज नहीं है लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं ये भी हम जैसे इंसान हैं हमारे जो लोग यहां मजदूरी करते हैं काम करते हैं अपने बच्चों को पालते हैं इतनी दूर ये क्यों आते हैं क्योंकि शायद वहां इनका रोजगार नहीं यहां कश्मीर में इनको रोजगार मिलता है तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियां मार के इनको मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए वहाँ की तो देगी देगी दूसरा इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं
7: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं यहाँ का वातावरण सुरक्षित है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है इस बार भी भुगतना पड़ सकता है देश के प्रधानमंत्री जी और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी जो लोग भी इसके पीछे हैं चाहे वो देश है चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाएंगे
8: देखिए आतंकवाद आतंकवाद है आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट जो आतंकी संगठन है उसने जिम्मेवारी ली है चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया उसकी CCTV फुटेज आई है और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए आतंकवाद आतंकवाद है आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है
9: डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसा सीनियर पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिशियन जब इस उम्र में जाके इस तरीके के बयान देता है

0: शायद भाई साहब सरिया गए हैं। और फिर वो बात आती है कि आतंकवाद की जननी रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इन लोगों की भी कहीं ना कहीं तारे जुड़ी होती है। तो इस वक्त जब जम्मू कश्मीर विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ऐसी छुटपुट हरकतें होने के बाद इस तरीके का घिनौना बयान देना है, इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को अपने शब्द वापस लेने चाहिए, और बजाय इसके कि आतंकवाद को बढ़ावा दे, इसकी निंदा करके जो ये घटना घटी है उस परिवार के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा होना चाहिए।
1: Gujarat is once again battling a fresh spell of monsoon fury. Incessant rainfall has triggered flood-like conditions across several districts, with roads submerged, rivers swelling, and normal life thrown out of gear. The IMD has issued a red alert for districts including Ahmedabad, Rajkot, Bhavnagar, Butar, and Surendranagar, warning of extremely heavy rainfall. Rescue teams remain on standby as authorities evacuate residents from vulnerable areas and urge people to stay indoors. My colleague Akhil has filed a ground report. Let's take a look.

0: Right now, I am at the bank of Tapi River. This is the very river where Surat city is situated. And behind me, you can see the visuals over here. This bridge is known as Causeway Bridge. The danger level mark of this bridge is 6 meters. But right now, the water is flowing above the danger level mark, which is approximately 8 meters up to the height right now. Right now, we are bringing you the live visuals from Navsari district. You can see the visual over here. The water current can be easily seen. Right now, I have rented a tractor to show you, to bring you the reality of the ground zero situation in which what we are witnessing, that not only Navsari district, apart from Navsari district, if you see Surat, Dang, Valsar, several districts across southern Gujarat have been badly impacted. And you can see the impact of the water over here. The water current level is so intense. At this stage, what we are witnessing, that not only this very village, apart from that, there are 24 to 25 villages which have got badly impacted, and due to which what we are witnessing, that there's a scarcity of food, drinking water, and people are facing a lot of difficulties.
1: बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दो तीन दिन से इतनी बारिश हो रही है ना कि हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है.
0: पीने का पानी कहाँ से लेके आना पड़ता है?
1: ये तीन किलोमीटर दूर से हम ये पानी, वो आधी बॉटल मिली है पानी. पानी ने लाइट ही ने चली गई है, बिजली चली गई, तो पानी कहाँ से मिलेगा हमें?
0: Now I am at Kasba village. This is one of the villages of Navsari district, and this very road connects Navsari to Surat. Right now you can see the visuals over here. The water current can be seen, and the impact and the magnitude of the water can also be seen. Right now you can see from this very side, from the side of Navsari, a tractor is just moving towards the side of Surat. The entire road has been blocked, the entire road has been choked. Right now, you can see the visuals behind me. These are the people who have been brought in over here. They have been migrated from a low-lying area. सभी लोग जो हैं वो स्टील की कंपनी में काम करते हैं.
2: सरिया लाइन का.
0: सरिया लाइन का काम. हाँ. कितनी परेशानी हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है बाढ़ के पानी की वजह से?
3: परेशानी तो बहुत दिक्कत हो रहा है सर. इतना बोलिए तो यानी कि बहुत दिक्कत, परेशानी तो बहुत है.
0: खाना पीना कैसे हो रहा है?
3: खाना पीना
0: तो जल रहा है, नहीं जल रहा है?
3: चूल्हा नहीं जल रहा है.
4: हम लोग थोड़ा बहुत भी भीख भाग के काम कर लेते थे, पैसा हो जाता था, लेकिन अभी का पानी का वजह से हम लोग को इधर आके बैठ के रहना पड़ता है. पूरा महीना हम लोग का,
5: तीन बार हम लोग का हुआ है आने जाने का, तीन बार.
0: एट सच कम्युनिटी सेंटर्स, पीपल फ्रॉम लो लाइंग एरियाज हैव बीन टेकन आउट, दे हैव बीन माइग्रेटेड ओवर हियर. टिल द टाइम वाटर लेवल गोज डाउन, टिल द टाइम दे विल बी केप्ट ओवर हियर अनलेस अंटिल द सिचुएशन इंप्रूव्स ऑन ग्राउंड जीरो. विद वीडियो जर्नलिस्ट पवन आकल फॉर एनडीटीवी 24/7.
6: And the flood crisis in Odisha's Jajpur district has deepened after seven river breaches affected over 1 lakh people across nearly 250 villages. Thousands have been evacuated as rescue and relief operations continue. My colleague Dev Kumar brings you this ground report from the flood-hit district.
7: Situation in Odisha's Jajpur has turned devastating. Around 250 villages are inundated. Right now, I am from the zero ground. You can see the visuals from here. Near about the villages are just battling with their life from last 3 to 4 days. And the flood has turned devastating. 250 villages are inundated. Over 1 lakh impacted after 7 breaches. The flood situation in Jajpur has turned critical following multiple river breaches across the region. Around 250 villages across 100 panchayats have been affected, impacting nearly 1 lakh people.
8: पानी यहाँ पे 5 फुट पानी था, रास्ता में 5 फुट पानी है, घर के अंदर 2 फुट पानी है.
9: घर के अंदर 2 फुट,
8: 2 फुट 3 फुट पानी है घर के अंदर. कोई खाना पीना नहीं बना पा रहे. सोने के लिए छत पे जाते थे, बारिश डेली हो रहा है, अभी छत पे भी सो नहीं पा रहे.
9: बारिश कब से कम है?
8: बारिश तो लास्ट 1 महीना से हो रहा है, लेकिन ये पानी भी आया, बारिश भी लगातार हो रहा है.
10: 15 दिन से पानी है यहाँ पे.
9: पानी, पानी में स्ट्रगल हो रहा है लाइफ
10: बहुत.
9: कितना तक पानी था?
10: वो यहाँ तक पानी था.
9: अभी फिलहाल गांव के अंदर हाल कैसा है?
10: आप तो देख रहे हैं ना कैसा है. बहुत ज़्यादा परेशान है हम.
9: बहुत ज़्यादा परेशान. सरकार की तरफ से पहुँचे, प्रशासन
10: पहुँचे हुए इतना ज़्यादा.
7: डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, स्पेशल रिलीफ टीम एज वेल एज ओड्राफ टीम हैज रीच्ड द विलेज एंड हैविंग द रेस्क्यू वर्क्स. From Odisha's Jaspur, Dev Kumar reports for NDTV.

0: बातों को समर्थन आप सभी लोग कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। हम सबके बच्चे अगर इस तरह की भाषा घर में इस्तेमाल करने लगे तो कोई उसको जो है अच्छा नहीं मानेगा।
1: आपको लगता नहीं है कि प्राइवेट लाइफ में, हॉस्टल में, कॉलेज में गाली गलौज तो होती है ना, करना चाहिए? नहीं, करना नहीं चाहिए, बट क्या उसके लिए जेल जाना चाहिए किसी को?
0: प्राइवेट लाइफ में या हॉस्टल लाइफ में इस तरह की गाली गलौज और भाषा तो मैंने नहीं सुनी है ना, और जो लोग करते होंगे उनका मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी जो मेरी नजर में आया और इस तरीके से संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक व्यक्ति के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनकी स्वर्गवासी माता जी के बारे में और एक फॉरेन लेडी लीडर के बारे में इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना गलत था।
1: क्योंकि आशुतोष जी, आपने एक कमेंट किया था मेरे ही शो पे जब आपने कहा था ये एग्जूबरेंस है, पर यहाँ पे सर्वे में पीपल आर सेइंग, 54% आर सेइंग दैट इफ दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड एंड इट डजंट जस्ट स्टॉप एट अब्यूज, देयर आर सम पीपल एंड आई एक्चुअली बिलीव दैट देव डन इट ओनली फॉर चीप थ्रिल्स एंड वायरलिटी, मेनी ऑफ देम हैज सेड थिंग्स लाइक, अरे उस मोदी को मार दो, अगर मोदी यहाँ पे होता तो मैं तो उसको खत्म कर देता। कैन दिस बी अलाउड टू पास एज एग्जूबरेंस? पीपल इन द सर्वे डोंट अग्री।
2: बट आशुतोष, एक बात बहुत ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, सार्वजनिक जीवन में कोई किसी को गाली नहीं देता और गाली देना भी नहीं चाहिए सार्वजनिक जीवन में। हम 7 लोग यहां पैनल पे बैठे हुए हैं, कोई ये कह सकता है कि हमने अपने जीवन में गाली नहीं दी? मैं तो कह सकता हूं कि मैं रोज कम से कम गाली देता हूं और अपने मित्रों के बीच में बातचीत में करता हूं, कोई बुरा नहीं मानता उस बारे में। देखिए, दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि मैं एक चीज का बड़ा बहुत पक्षधर हूं और मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री का दिल बहुत बड़ा है। बच्चों को FIR करके जेल नहीं भेजना चाहिए, आप उनको बुला के डांट दीजिए, 2 थप्पड़ लगा दिए, अब FIR करके जेल भेजना ये कुछ ज्यादा ही है।
1: तुषार,
2: ये FIR करना मुझे बिल्कुल आपकी राय से सहमत नहीं। प्लीज,
3: वी आर कंफ्यूजिंग टू थिंग्स। इट्स नॉट अबाउट अ चाइल्ड और एन एडल्ट। दिस इज अ कंट्री वेयर समवन मेड अ कमेंट और समवन एल्सस रिलीजन and an innocent tailor was butchered in the name of Sir Tanse Joda. Let's be very clear. Now that was said in public sphere, that was said before the camera. The lady in question beat a child, and she is not a child from what I have read of public records. She is 25 years old. She said some very hard abusive words on camera. She said it for virality. It wasn't a private conversation. She willingly made it public. She knew she was on the camera. So the differentiation needs to be clear. Either we become such a liberal society that we reject blasphemy laws, we reject FIRs on abusive language, we become free speech absolutists. Either then we have blasphemy laws, we at least need to probe an FIR like this, which is what your survey also says, that probe the FIRs. Don't put them in jail, but at least probe the FIRs. That's what majority of the surveys are saying, that probe karo, phir dekho kya karna hai.
1: Rashid Kindai.
4: I think Padmaja, we are making, you know, simple things looks complex. This was a political agitation, and we have a very rich history of political agitations where people who wage war against the state, that was the allegation, and they were brought in as chief ministers. I can give you examples of Lal Denga, Hawaldar Lal Denga in Mizoram. I can think of that Assam chief minister, Prafulla Mohanta. I can think of the Akali leadership, Prakash Singh Badal, and several others, not to talk of Sheikh Abdullah. All kind of thing, there was very serious allegations and they were imposed, they were put behind bar, and they were given highest office in that particular state. So this is our legacy of political agitation. This is, I think, the 54% people have just trying to be, you know, socially desirable. It should have been actually 100% pardon. 100% pardon.
1: Pradeep Bhandari. And you're not helping your popularity. You know, if popularity is dipping Pradeep Bhandari by seeming like a heavy-handed state, you are only going to impact your popularity further.
5: First of all, none of them is less than 18 years of age, neither are they juvenile. So first, a legitimate argument. No court in this country has said that right to free speech for a person who is more than 18 years of age, who's a voter, is equal to right to abuse. 2015, 1989, 2016, various judgments of the Supreme Court say that. That is a legal argument. Now, if Ashutosh wants to legitimize it, he can do it in his family and he can do it in the Congress party. And Rahul Gandhi should post a video with such abusive personal slurs. He said that, if these abusive personal slurs are put at me, I am proud of it, and none of the Congress workers will take action, because we've seen during emergency how more than, in fact, in Gujarat, when Chimanbhai Patel was the chief minister, more than 100 students were killed just for an Andolan. But let me come to this survey, because I disagree to it. Now, just 10 seconds. See, the question number 7 says that abusive language, there should be action. So majority people, 55% agree with the action that the government has taken. If that is correct,

0: सुबह।
1: वाओ मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: Sri Lanka, who won the country's first ever athletic golds at the CWG.
1: Neeraj Chopra, in his comeback quest, threw 80.87 to open the evening's proceedings. The Tokyo Olympic champion, throwing into a stiff headwind, responded with 85.83 on his second attempt. This was also his season's best. At that stage, it was good enough to put him in the gold medal position. Then came Sri Lanka's gatecrasher, Ramesh Tharanga Pathirage. He arrived with the reputation of a giant killer and lived up to it. A massive, massive throw of 89.75 meter from the Sri Lankan pushed Neeraj down to the second place. Neeraj tried to fight back, but the weather and the wind conspired against him. His remaining throws of 81.29 and 80.73 meters were not enough to reclaim the lead.
2: Silver medal hai, par abhi try karenge ki abhi next competitions mein धीरे धीरे और बढ़ाएं।
3: नहीं, प्रेशर तो क्या है, बस ये है कि अगर 100% फिट हो तो फिर वो फाइटिंग स्पिरिट ज़्यादा रहती है, मतलब ये लगता है कि अब कुछ भी कर सकते हैं। और अगर मतलब आप इंजरी से आ रहे हैं तो थोड़ा सा सोच सोच के कदम रखना पड़ता है, तो आज वही था कि थोड़ा मन में डर था, कभी सोच रहा था कि पूरा जोर से मैं भागूँ और कभी लग रहा था कि थोड़ा कंट्रोल में रखूँ, क्योंकि वेदर कंडीशंस के हिसाब से वही थोड़ा मिक्स फीलिंग्स थी और फिर भी थोड़ा ठीक था।
1: It was not the Neeraj versus Nadeem contest many had expected, as the Commonwealth champion from Pakistan was unable to defend his title. After opening with a foul, Nadeem managed only 77.41 meter and 75.39 meter with his two next attempts. Those efforts left him outside the top 8, ending his campaign just after 3 throws. The other big story of the night belonged to another man from Haryana, Yashveer Singh. A huge throw in the dying moments of the javelin final was enough to edge past Dow Smith of South Africa. His personal best of 85.41 meters earned him the bronze medal. In the process, he finished ahead of the likes of Anderson Peters and Arshad Nadeem in what was arguably the strongest Commonwealth Games javelin field ever assembled.
4: अभी सर स्टार्टिंग से जैसे डाउन चल रहा था, बीच में एक 81.33 समथिंग गई थी मेरी थ्रो, तो उस टाइम पे मैंने जैसे रिजल्ट भी देखा था, भाई ब्रॉन्ज मेडल 82 मीटर से उसमें चल रहा है, तो फिर मन में ये चल रहा था भाई 82 मीटर अभी ग्राउंड में लगा के आए हैं, कंपटीशन भी पर्सनल बेस्ट की थी, तो उससे 82 से ऊपर और अच्छी कर सकता हूँ मैं, तो फिर 500 तक अच्छा जा नहीं रहा था, फिर लास्ट थ्रो में ये था कि भाई देखा जाएगा जो होगा, लास्ट थ्रो अच्छी निकली होगी उसमें।
1: इट वॉज अ स्टेटमेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट, with Sri Lanka taking gold and India claiming silver as well as the bronze medal to complete a clean sweep of the medals in the men's javelin final. Rika Roy for NDTV.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आकर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।

कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का

0: प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
1: विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर को, कि अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है, तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा। मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके, तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।
2: అలాంటి ప్రధానమంత్రిని చాలామంది ఆయన మీద మాటలంటా ఉంటే, ఆయన్ని అనకూడని మాటలంటా ఉంటే నా గుండె కదిలించేసింది, నా కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి, బాధ వచ్చింది. దేశం కోసం కష్టపడే వారికి ఇవా చివరికి మనం ఇచ్చేదేం? కొత్త తరానికి ఏం తెలుసు? ఆయన పడ్డ కష్టం, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు మన ప్రధానమంత్రి గారు. ఈరోజు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి మనకి, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు. శత్రు దేశాలు మన అభివృద్ధికి ఈర్ష్యపడే పశ్చిమ దేశాలు, వీటన్నిటినీ తట్టుకొని ఒకవైపు విదేశాల్లో ఉండే శత్రువులతో పోరాడాలి, దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్దామంటే అంతర్గత శత్రువులతో పోరాడాలి. అలాంటి వ్యక్తికి మనం ఇవ్వగలిగేది కేవలం మేము ఉన్నాం మీ వెంట, మీ మీద మాట పడితే అది మా మీద పడ్డట్టే, అదే మనం వారికి ఇవ్వాల్సింది.
3: Well, Prime Minister's new video message saying that he has forgiven the students who abused him during the Jantar Mantar protests has triggered a full-blown political showdown. In the video, the BJP and its allies have rallied behind the remarks, with NCP calling the message an act of magnanimity and saying the country's youth need direction, not condemnation. But the opposition has hit back sharply. Congress says that the issue is not about Prime Minister Modi's pardon, but about why lakhs of students felt unheard and pushed to such an extent and anger in the first place. P. Chidambaram, on the other hand, questioned whether Prime Minister Modi would also forgive the abusive BJP trolls online. Meanwhile, Shiv Sena UB

0: The committee has asked who had even sought forgiveness in the first place, insisting the students were fighting for justice.
1: पहिली गोष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांवरती ही वेळ ज्यांनी आणली त्या मोदीजींनी आणि अमित शहांनी विद्यार्थ्यांची आणि विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांची माफी मागितली पाहिजे. याचं कारण ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ताटीला खिळे लावून मारण्यात आलं, त्यांच्यावरती छऱ्यांच्या बंदुकीने हल्ला केला गेला, अश्रुधूर सोडला गेला, एवढंच नाही तर अत्यंत वाईट पद्धतीने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले. ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसा तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते. ज्या मुलांनी नीटच्या म्हणजे काय बोल म्हणजे आपण ऐकायला सुद्धा अंगावरती शहर येत होते तर त्या मुलांचे भोगले आणि त्यांची मागणी काय आहे की शिक्षण पद्धतीत सुधार. साधी मागणी होती, जे तुम्ही आत्ता करताय ते तुम्ही पहिल्या दिवशी त्यांच्याशी बोलून करू शकत होतात, पण तुम्हाला अतिरेक्यांशी बोलायला पाहिजे, पाकिस्तानांशी बोलायला काय वाटत नाही. पण आपल्याच देशाचे जे भाग्यविधाते आहेत त्यांना तुम्ही झुरळ म्हणताय, त्यांना तुम्ही भरकटलेले म्हणताय, काय पुढे देश चालणार कसा.
0: Now, if you open your social media accounts during the Lok Sabha debate on the Public Examinations Amendment Bill, you might have thought that you were scrolling through an Instagram comment thread. In a historic shift in the parliamentary rhetoric, MPs across both the Treasury and the opposition benches treated traditional Hindi idioms for internet native slang. But for India's Gen Z voters, is this slang adoption building genuine connection or is it just creating content for the feed? NDTV's Reet Kaur Sahani brings you this special report.
2: The protests at Jantar Mantar saw hundreds of Gen Z protesters raise their voices, using the platform most palatable to them. Students made reels on viral trends, raised slogans, danced, and even sang songs to make their voices be heard. The protest was arguably one of the biggest demonstrations from a generation that forms the future of the Indian electorate. Although the demonstration concluded with the resignation of the Union Education Minister, its after effects spilled inside of the Parliament. As the debate regarding paper leaks reached, we saw parliamentarians speak in a language that hadn't been spoken before. The language of the Gen Z.
3: Modi ji clocked it and provided a legislative solution.
4: Andolan kyun kiya aapne? Unko FOMO hua, FOMO. Fear of missing out.
5: Pura ye pradarshan ho raha tha bachchon ka. Rahul Gandhi ji ko pura political FOMO ho gaya.
6: Hum jo Dilulu ke bare mein bole na, aap bhi us Dilulu mein na rehna ki wo aapke saath hai.
2: Not just the parliamentarians. The Prime Minister's Instagram strategy has also become a talking point, with the Prime Minister using the platform to speak with Gen Z, whom he refers to as his friends.
7: Hi friends, aaj to man karta hai bas aapse hi baatein karu.
2: As politicians move away from the conventional parliamentary language to something more casual and relatable, NDTV asked Gen Z whether the adoption of lingos by legislators had any impact on how they would like to be spoken to.
8: Gen Z बहुत straightforward है, सबके अलग point of views होते हैं. जब तक वो communication नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेंगे चीजें और हम कैसे बता पाएंगे. एक communication तो key होता है हर चीज का.
9: Yeah, in our own way, like Gen Z slangs would be better. We'll connect them in good way if they talk to us like that only.
10: I don't think so. It is working because it after the protest they started using it as per what I know. So I feel it's more of a performative kind of thing, and they want to just they want to make them show like they are relatable to the Gen Z. So I don't think it's working.
11: I do think that they should use more of social media. It should be more like reels based or. शुड बी लाइक के उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग बात करें और उन्हें ऐसा ना दिखाए कि आप यूजलेस हो.
12: But over the past couple of days, we've seen a wide variety of things, from the Prime Minister releasing late night reels to member parliaments using Gen Z lingo inside of the parliament. As the youth form the largest demographic in the country, one thing remains crystal clear, that to win the elections, the politicians will have to nail their campaign and win the hearts of the young Indians, or else they could risk sitting in the opposition. This is Reet Kaur Sahani reporting from New Delhi for NDTV.
0: Well, a major anti-terror operation is underway in Jammu and Kashmir's Kulgam after a terrorist targeted migrant workers at a brick kiln, killing two laborers from Chhattisgarh. Former Jammu and Kashmir chief minister has made an explosive claim about the attack and asked, why is it that the attacks happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir chief minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
13: इसी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले।
14: इससे पहले भी पुलिस वाले की अटैक हुआ है।
13: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट हुड मांग रहे होते।
15: ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें।
16: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
17: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ का वातावरण सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है, जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है। हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है, इस बार भी भुगतना पड़ सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी, और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो देश है, चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है, वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाएंगे।
18: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो आतंकी संगठन है, उसने जिम्मेवारी ली है। चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया, उसकी CCTV फुटेज आई है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है।

0: about the attack and asked, why is it that the attacks open and happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
1: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले।
2: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है।
1: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट हुड मांग रहे होते
3: हैं। ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें।
4: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
5: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ का वातावरण सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है, जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है। हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है, इस बार भी भुगतना पड़ सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी, और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो देश है चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है, वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाए।
6: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो आतंकी संगठन है, उसने जिम्मेवारी ली है। चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया, उसकी CCTV फुटेज आई है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है।

0: उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है, और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
1: विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है, वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर वो, कि अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है, तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा, मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके, तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।
2: అలాంటి ప్రధానమంత్రిని చాలామంది ఆయన మీద మాట్లాడుతూ ఉంటే, ఆయన్ని అనకూడని మాట్లాడుతూ ఉంటే నా గుండె కదిలించేసింది, నా కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి, బాధ వచ్చింది. దేశం కోసం కష్టపడేవారికి ఇవా చివరికి మనం ఇచ్చేదేం? కొత్త తరానికి ఏం తెలుసు? ఆయన పడ్డ కష్టం, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు మన ప్రధానమంత్రి గారు. ఈరోజు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి మనకి, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు. శత్రు దేశాలు మన అభివృద్ధికి ఈర్ష్యపడే పశ్చిమ దేశాలు, వీటన్నిటినీ తట్టుకొని ఒకవైపు విదేశాల్లో ఉండే శత్రువులతో పోరాడాలి, దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్దామంటే అంతర్గత శత్రువులతో పోరాడాలి. అలాంటి వ్యక్తికి మనం ఇవ్వగలిగేది కేవలం మేము ఉన్నాం మీ వెంట, మీ మీద మాట పడితే అది మా మీద పడ్డట్టే, అదే మన వారికి ఇవ్వాల్సింది.
3: Well, Prime Minister's new video message saying that he has forgiven the students who abused him during the Jantar Mantar protests has triggered a full-blown political showdown. In the video, the BJP and its allies have rallied behind the remarks, with NCP calling the message an act of magnanimity and saying the country's youth need direction, not condemnation. But the opposition has hit back sharply. Congress says that the issue is not about Prime Minister Modi's pardon, but about why lakhs of students felt unheard and pushed to such an extent and anger in the first place. P. Chidambaram, on the other hand, questioned whether Prime Minister Modi would also forgive the abusive BJP trolls online. Meanwhile, Shiv Sena UBT has asked who had even sought forgiveness in the first place, insisting the students were fighting for justice.
4: पहिली गोष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांवरती ही वेळ ज्यांनी आणली, त्या मोदीजीने आणि अमित शहानी विद्यार्थ्यांची आणि विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांची माफी मागितली पाहिजे. याचं कारण ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ताटीला खिळे लावून मारण्यात आलं, त्यांच्यावरती छऱ्यांच्या बंदुकीने हल्ला केला गेला, अश्रुधूर सोडला गेला, एवढंच नाही तर अत्यंत वाईट पद्धतीने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले. ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते. ज्या मुलांनी नीटच्या म्हणजे काय बोल, म्हणजे आपण ऐकायला सुद्धा अंगावरती शहर येत होते, तर त्या मुलांचे भोगले आणि त्यांची मागणी काय आहे की शिक्षण पद्धतीत सुधार. साधी मागणी होती, जे तुम्ही आत्ता करताय ते तुम्ही पहिल्या दिवशी त्यांच्याशी बोलून करू शकत होतात, पण तुम्हाला अतिरेक्यांशी बोलायला पाहिजे, पाकिस्तानांशी बोलायला काय वाटत नाही, पण आपल्याच देशाचे जे भाग्यविधाते आहेत

0: The mat secured the decisive win and became the first Indian judoka to stand on top of the Commonwealth Games podium. It was an emotional victory. Asmita dedicated the medal to her late father, who passed away last December, saying she had almost lost hope before rebuilding her career and returning to the mat.
1: उधर इतना सपना बड़ा नहीं है कि कोई इतना ऊपर जाएंगे करके, तो मेरे पापा हमेशा सपोर्ट करते थे, बट अचानक मेरे पापा ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हो गई थी 2025 दिसंबर में, तो उसके बाद मुझे लगा सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। बट फिर पापा जाने के 10 दिन बाद मुझे मेरे मम्मी ने ट्रेनिंग में भेज दिया फिर से कि आज मैं अगर तुम्हें रुकाऊंगी तो तुम्हारे पापा सोचेंगे मैं तुम्हारे सपना को आगे बढ़ाने के लिए रुका रही हूँ।
0: A short while later, 23-year-old Harsh Singh delivered another milestone. Facing Australia's Joshua Katz in the men's 60kg final, Harsh stayed composed under relentless early pressure before producing the decisive throw with less than a minute remaining. Harsh became India's second Commonwealth Games judo gold medalist.
2: मैं बहुत खुश हूँ आज अपनी फैमिली के लिए मैंने गोल्ड जीता है और आज सारे साथ में थे हमारे कोचेज एंड पूरे मेरे फ्रेंड्स फैमिली सबके कॉल मैसेज आ रखे थे कि अच्छे से खेलना और गोल्ड लेकर आना इंडिया के लिए। मैं दिल्ली से आता हूँ और क्या कहते हैं मैं अपनी मम्मी को समर्पित करना चाहूँगा ये मेडल।
0: The silver lining to the evening's effort came with another medal from Yamini Maurya. She lost gold but won silver in 57kg category to end India's remarkable judo campaign on the penultimate day of competitions at the 2026 Commonwealth Games. Rika Roy for NDTV.
3: With that, it's time for us to slip into a short break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.

0: रोटी कमाने आए थे उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें।
1: नहीं, क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए। और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
2: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ का वातावरण सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है, जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है। हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है, इस बार भी भुगतना पड़ सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी, और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो देश है, चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है, वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाए।
3: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो आतंकी संगठन है, उसने जिम्मेवारी ली है। चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया, उसकी CCTV फुटेज आई है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है।

0: MPs across both the Treasury and the opposition benches treated traditional Hindi idioms for internet native slang. But for India's Gen Z voters, is this slang adoption building genuine connection, or is it just creating content for the feed? NDTV's Reet Kaur Sahani brings you this special report.
1: The protests at Jantar Mantar saw hundreds of Gen Z protesters raise their voices, using the platform most palatable to them. Students made reels on viral trends, raised slogans, danced, and even sang songs to make their voices be heard. The protest was arguably one of the biggest demonstrations from a generation that forms the future of the Indian electorate. Although the demonstration concluded with the resignation of the Union Education Minister, its after effects spilled inside of the Parliament. As the debate regarding paper leaks reached, we saw parliamentarians speak in a language that hadn't been spoken before, the language of the Gen Z.
2: Modi ji clocked it and provided a legislative solution.
3: Andolan kyun kiya aapne? Unko FOMO hua, FOMO. Fear of missing out.
4: Pura ye pradarshan ho raha tha bachchon ka. Rahul Gandhi ji ko pura political FOMO ho gaya.
5: Hum jo dilulu ke bare mein bole na, aap bhi us dilulu mein na rehna ki wo aapke saath hai.
1: Not just the parliamentarians, the Prime Minister's Instagram strategy has also become a talking point, with the Prime Minister using the platform to speak with Gen Z, whom he refers to as his friends.
6: Hi friends, aaj to man karta hai bas aapse hi baatein karu.
1: As politicians move away from the conventional parliamentary language to something more casual and relatable, NDTV asked Gen Z whether the adoption of lingos by legislators had any impact on how they would like to be spoken to.
7: Gen Z बहुत straightforward है, सबके अलग point of views होते हैं। जब तक वो communication नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेंगे चीजें और हम कैसे बता पाएंगे? एक communication तो key होता है हर चीज का।
8: Yeah, in our own way, like Gen Z slangs would be better. We'll connect them in good way if they talk to us like that only.
9: I don't think so. It is working because it after the protest they started using it as per what I know. So I feel it's more of a performative kind of thing, and they want to make them show like they are relatable to the Gen Z. So I don't think it's working.
10: I do think that they should use more of social media. It should be more like reels based or. Should be like के उनकी जो problems है उन उसके regarding बात करें और उन्हें ऐसा ना दिखाएं कि आप useless हो.
11: But over the past couple of days, we've seen a wide variety of things, from the Prime Minister releasing late night reels to Member Parliaments using Gen Z lingo inside of the Parliament. As the youth form the largest demographic in the country, one thing remains crystal clear: that to win the elections, the politicians will have to nail their campaign and win the hearts of the young Indians, or else they could risk. Sitting in the opposition. This is Reet Kaur Sahani reporting from New Delhi for NDTV.
0: Well, a major anti-terror operation is underway in Jammu and Kashmir's Kulgam after a terrorist targeted migrant workers at a brick kiln, killing two labourers from Chhattisgarh. Former Jammu and Kashmir Chief Minister has made an explosive claim about the attack and asked, why is it that the attacks happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
12: इसी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले.
13: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है.
12: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट हुड मांग रहे होते.
14: ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया. इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है. पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें।
15: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए। और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
16: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ का वातावरण सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है, जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है। हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है, इस बार भी भुगतना पड़ सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी, और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो देश है चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है, वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाए।
17: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो आतंकी संगठन है, उसने जिम्मेवारी ली है। चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया, उसकी CCTV फुटेज आई है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है।

0: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
1: ए युग तुम्हारा, ए रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
2: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
3: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Tanisha Avasthi. Let's get you the top headlines that we're tracking at this hour. Prime Minister Modi in Mysuru sends a message to the youth, says they must be guided and that the youth is the driving force of India. National Security Advisor Ajit Doval has made an appeal to the young people of India to dedicate themselves completely to nation building, stating that a rare window of opportunity has opened in country's history that must not be allowed to slip away. Kaveri water release row has now intensified as Karnataka farmers protest in Mandya, raising Go Back Vijay slogan. Screenings of Vijay's Jananayagan are cancelled at several theatres, while Stalin has urged Chief Minister Vijay to avoid visiting Karnataka and resolve the Mekedatu issue through legal means. Farooq Abdullah has sought a probe into Kulgam terror attack and he has questioned its timing as well amid renewed demand for Jammu and Kashmir statehood. Omar, in fact, has released ex gratia of Rs 10 lakh for families of the two terror attack victims. Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha chairs a key security meeting. Heavy rains continue to lash several parts of southern Gujarat, inundating low-lying areas, disrupting daily life and prompting authorities to intensify emergency measures after the IMD had issued a red alert for 13 districts. Big boost to India-China trade ties. Historic Silk Route link via Sikkim reopens after 6 years, reviving the cross-border commerce. The development is seen as a positive step in India-China bilateral ties. Trade through Nathula first began on July 6, 2006, but was suspended during the COVID-19 pandemic. The controversy over independent MP Pappu Yadav's parliament skid on Chanda Chori has intensified with multiple complaints and FIR and protest. A complaint has been filed in Delhi by BJP MP Bansuri Swaraj. An FIR has been filed in Varanasi as well over the same skid. The Vishwa Hindu Parishad has strongly condemned the skid, accusing opposition of mocking a sacred national cause. A protest, in fact, has erupted in multiple states as we speak. The VHP workers have staged demonstrations and burnt effigy of Pappu Yadav. We also learned that Pappu Yadav has hit back at the protests that are happening, saying that the person who is protecting Sanatan is being targeted and said that he will do this 100 times to save Sanatan. Meanwhile, what we also know is that Hyderabad Congress replicated the same skit over Chandra Chori earlier today. We have political reactions coming in on that story.
4: इन लोगों ने कभी राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए एक रुपया भी नहीं दिया, वो वहाँ पैसे डालने के लिए इकट्ठा होते। और फिर वो साधु जिसको बनाया है वो उन पैसों को लेके भाग जाता है। ये आक्रमण भारत की सारी साधु शक्ति पर है। साधु शक्ति सड़क पर उतरेगी और पूरे भारत में इतना बड़ा प्रतिकार होगा इसका, जिसकी आंच को ये लोग झेल नहीं पाएंगे।
5: सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान का हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है, चोर को जो प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोल रहे हैं उसके खिलाफ लड़ने की और लड़ेंगे, जितना भी विरोध और गोली खाना पड़ेगा खाएंगे, जितना भी बीजेपी के लोगों को जहां जाके सना देना हो दो, हमें उसकी कोई चिंता।
3: एंड वेल द प्राइम मिनिस्टर लेट लास्ट नाइट रिलीज्ड अनदर वीडियो मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, दिस टाइम रिस्पॉन्डिंग टू वायरल वीडियोज ऑफ यंग वुमेन अब्यूजिंग हिम ड्यूरिंग द जंतर मंतर प्रोटेस्ट। ही सेड दैट द एंटायर कंट्री वॉच्ड व्हाट हैपेंड। द प्राइम मिनिस्टर डिस्क्राइब द लैंग्वेज यूज्ड एज शॉकिंग, इंक्लूडिंग अब्यूसेस दैट वर डायरेक्टेड एट हिज मदर, बट इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग पनिशमेंट प्राइम मिनिस्टर सेड दैट ही वॉन्ट्स टू फॉरगिव व्हाट ही कॉल्ड द मिसलेड यूथ ऑफ द कंट्री, एडिंग दैट लीगल एक्शन इज नॉट द सोल्यूशन, दैट सोसाइटी मस्ट हेल्प गाइड यंग पीपल इन टू द राइट पाथ।
6: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई, न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
7: विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर वो, अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है, तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा। मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके, तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।
8: अलांटी प्रधानमंत्री चाला मंदी आयन मीद माटलंटा उंटे, आयन्नी अनकूडनी माटलंटा उंटे ना गुंडे कदिलिंचेसिंदी। కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి, బాధ వచ్చింది. దేశం కోసం కష్టపడే వారికి ఇవా చివరికి మనం ఇచ్చేదేం? కొత్త తరానికి ఏం తెలుసు? ఆయన పడ్డ కష్టం, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు మన ప్రధానమంత్రి గారు. ఈరోజు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి మనకి, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు. శత్రు దేశాలు, మన అభివృద్ధికి ఈర్ష్యపడే పశ్చిమ దేశాలు, వీటన్నిటినీ తట్టుకొని ఒకవైపు విదేశాల్లో ఉండే శత్రువులతో పోరాడాలి, దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్దామంటే అంతర్గత శత్రువులతో పోరాడాలి. అలాంటి వ్యక్తికి మనం ఇవ్వగలిగేది కేవలం మేమున్నాం మీ వెంట, మీ మీద మాట పడితే అది మా మీద పడ్డట్టే, అదే మన వారికి ఇవ్వాల్సింది.
3: Well, Prime Minister's new video message saying that he has forgiven the students who abused him during the Jantar Mantar protests has triggered a full-blown political showdown. In the video, the BJP and its allies have rallied behind the remarks, with NCP calling the message an act of magnanimity and saying the country's youth need direction, not condemnation. But the opposition has hit back sharply. Congress says that the issue is not about Prime Minister Modi's pardon, but about why lakhs of students felt unheard and pushed to such an extent and anger in the first place. P. Chidambaram, on the other hand, questioned whether Prime Minister Modi would also forgive the abusive BJP trolls online. Meanwhile, Shiv Sena UBT has asked who had even sought forgiveness in the first place, insisting the students were fighting for justice.
9: Paili goshta manje vidyarthyanvarti hi vel jani handli त्या मोदीजीने आणि अमित शहाने विद्यार्थ्यांची आणि विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांची माफी मागितली पाहिजे. याचं कारण ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ताटीला खिळे लावून मारण्यात आलं, त्यांच्यावरती छऱ्यांच्या बंदुकीने हल्ला केला गेला, अश्रुधूर सोडला गेला, एवढंच नाही तर अत्यंत वाईट पद्धतीने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले. ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसा तो तर मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते. ज्या मुलांनी नीटच्या म्हणजे काय बोल म्हणजे आपण ऐकायला सुद्धा अंगावरती शहर येत होते, तर त्या मुलांचे भोगले आणि त्यांची मागणी काय आहे की शिक्षण पद्धतीत सुधार. साधी मागणी होती, जे तुम्ही आत्ता करताय ते तुम्ही पहिल्या दिवशी त्यांच्याशी बोलून करू शकत होतात, पण तुम्हाला अतिरेक्यांशी बोलायला पाहिजे, पाकिस्तानांशी बोलायला काय वाटत नाही. पण आपल्याच देशाचे जे भाग्यविधाते आहेत त्यांना तुम्ही झुरळ म्हणताय, त्यांना तुम्ही भरकटलेले म्हणताय, काय पुढे देश चालणार कसा?
3: Now, if you open your social media accounts during the Lok Sabha debate on the Public Examinations Amendment Bill, you might have thought that you were scrolling through an Instagram comment thread. In a historic shift in the parliamentary rhetoric, MPs across both the Treasury and the opposition benches treated traditional Hindi idioms for internet native slang. But for India's Gen Z voters, is this slang adoption building genuine connection, or is it just creating content for the feed? NDTV's Reet Kaur Sahani brings you this special report.
10: The protests at Jantar Mantar saw hundreds of Gen Z protesters raise their voices, using the platform most palatable to them. Students made reels on viral trends, raised slogans, danced, and even sang songs to make their voices be heard. The protest was arguably one of the biggest demonstrations from a generation that forms the future of the Indian electorate. Although the demonstration concluded with the resignation of the Union Education Minister, its after effects spilled inside of the Parliament. As the debate regarding paper leaks reached, we saw parliamentarians speak in a language that hadn't been spoken before. The language of the Gen Z.
11: Modi ji clocked it and provided a legislative solution.
12: Andolan kyun kiya aapne? Unko FOMO hua, FOMO. Fear of missing out.
13: Pura ye pradarshan ho raha tha bachchon ka. Rahul Gandhi ji ko pura political FOMO ho gaya.
14: Hum jo Dilulu ke bare mein bole na, aap bhi us Dilulu mein na rehna ki wo aapke saath hai.
10: Not just the parliamentarians. The Prime Minister's Instagram strategy has also become a talking point, with the Prime Minister using the platform to speak with Gen Z, whom he refers to as his friends.
6: Hi friends, aaj to man karta hai bas aapse hi baatein karu.
10: As politicians move away from the conventional parliamentary language to something more casual and relatable, NDTV asked Gen Z whether the adoption of lingos by legislators had any impact on how they would like to be spoken to.
15: Gen Z बहुत straightforward है, सबके अलग point of views होते हैं। जब तक वो communication नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेंगे चीजें और हम कैसे बता पाएंगे? एक communication तो key होता है हर चीज का।
16: Yeah, in our own way, like Gen Z slangs would be better. We'll connect them in good way if they talk to us like that only.
17: I don't think so. It is working because it after the protest they started using it as per what I know. So I feel it's more of a performative kind of thing, and they want to make them show like they are relatable to the Gen Z. So I don't think it's working.
18: I do think that they should use more of social media. It should be more like reels based, or should be like के उनकी जो problems है उन उसके regarding बात करें और उन्हें ऐसा ना दिखाएं कि आप useless हो.
3: But over the past couple of days, we've seen a wide variety of things, from the Prime Minister releasing late night reels to member parliaments using Gen Z lingo inside of the parliament. As the youth form the largest demographic in the country, one thing remains crystal clear: that to win the elections, the politicians will have to nail their campaign and win the hearts of the young Indians, or else they could risk sitting in the opposition. This is Reet Kaur Sahani reporting from New Delhi for NDTV.
19: Well, a major anti-terror operation is underway in Jammu and Kashmir's Kulgam after a terrorist targeted migrant workers at a brick kiln, killing two laborers from Chhattisgarh. Former Jammu and Kashmir chief minister has made an explosive claim about the attack and asked, why is it that the attacks happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir chief minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
20: इसी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले।
21: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है,
20: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट हुड मांग रहे होते।
22: ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा दे के ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें।
23: क्या कर?

0: मेरे पास अल्फाज नहीं है, लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
1: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ का वातावरण सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है, जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है। हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है, इस बार भी भुगतना पड़ सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी, और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो देश है चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है, वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाएंगे।
2: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो आतंकी संगठन है, उसने जिम्मेवारी ली है। चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया, उसकी CCTV फुटेज आई है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: Hello and welcome. You're watching NETV 24/7. I'm Tanisha Vasti. Let's get you the top headlines that we're tracking at this hour. Prime Minister Modi in Mysuru sends a message to the youth, says they must be guided and that the youth is the driving force of India. National Security Advisor Ajit Doval has made an appeal to the young people of India to dedicate themselves completely to nation building, stating that a rare window of opportunity has opened in country's history that must not be allowed to slip away. Kaveri water release row has now intensified as Karnataka farmers protest in Mandya, raising Go Back Vijay slogan. Screenings of Vijay's Jananayagan are cancelled at several theatres, while Stalin has urged Chief Minister Vijay to avoid visiting Karnataka and resolve the Mekatato issue through legal means. Farooq Abdullah has sought a probe into Kulgam terror attack and he has questioned its timing as well amid renewed demand for Jammu and Kashmir statehood. Omar, in fact, has released ex gratia of Rs 10 lakh for families of the two terror attack victims. Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha chairs a key security meeting. Heavy rains continue to lash several parts of southern Gujarat, inundating low-lying areas, disrupting daily life and prompting authorities to intensify emergency measures after the IMD had issued a red alert for 13 districts. Big boost to India-China trade ties. Historic Silk Route link via Sikkim reopens after 6 years, reviving the cross-border commerce. The development is seen as a positive step in India-China bilateral ties. Trade through Nathula first began on July 6, 2006, but was suspended during the COVID-19 pandemic. The controversy over independent MP Pappu Yadav's parliament skid on Chanda Chori has intensified with multiple complaints and FIR and protest. A complaint has been filed in Delhi by BJP MP Basuri Swaraj. An FIR has been filed in Varanasi as well over the same skid. The Vishwa Hindu Parishad has strongly condemned the skid, accusing opposition of mocking a sacred national cause. A protest, in fact, has erupted in multiple states as we speak. The VHP workers have staged demonstrations and burnt effigy of Pappu Yadav. We also learned that Pappu Yadav has hit back at the protests that are happening, saying that the person who is protecting Sanatan is being targeted and said that he will do this 100 of times to save Sanatan. Meanwhile, what we also know is that Hyderabad Congress replicated the same skit over Chandra Chori earlier today. We have political reactions coming in on that story.
1: इन लोगों ने कभी राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए एक रुपया भी नहीं दिया, वो वहां पैसे डालने के लिए इकट्ठा होते और फिर वो साधु जिसको बनाया है वो उन पैसों को लेके भाग जाता है। ये आक्रमण भारत की सारी साधु शक्ति पर है। साधु शक्ति सड़क पर उतरेगी और पूरे भारत में इतना बड़ा प्रतिकार होगा इसका, जिसकी आंच को ये लोग झेल नहीं पाएंगे।
2: सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है। चोर को जो प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोल रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ने की और लड़ेंगे। जितना भी विरोध और गोली खाना पड़ेगा खाएंगे। जितना भी बीजेपी के लोगों को जहां जाके सना देना हो दो, हमें उसकी कोई चिंता।
0: एंड वेल, द प्राइम मिनिस्टर late last night released another video message on Instagram, this time responding to viral videos of young women abusing him during the Jantar Mantar protest. He said that the entire country watched what happened. The Prime Minister described the language used as shocking, including abuses that were directed at his mother. But instead of demanding punishment, Prime Minister said that he wants to forgive what he called the misled youth of the country, adding that legal action is not the solution, that society must help guide young people into the right path.
3: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश

0: दिया, वो वहां पैसे डालने के लिए इकट्ठा हो गई। और फिर वो साधु जिसको बनाया है वो उन पैसों को लेके भाग जाता है। ये आक्रमण भारत की सारी साधु शक्ति पर है। साधु शक्ति सड़क पर उतरेगी और पूरे भारत में इतना बड़ा प्रतिकार होगा इसका, जिसकी आंच को ये लोग झेल नहीं पाएंगे।
1: सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है। चोर को जो प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोल रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ने की और लड़ेंगे। जितना भी विरोध और गोली खाना पड़ेगा खाएंगे। जितना भी बीजेपी के लोगों को जहां जाके सना देना हो दो, हमें उसकी कोई चिंता।
2: एंड वेल, द प्राइम मिनिस्टर late last night released another video message on Instagram, this time responding to viral videos of young women abusing him during the Jantar Mantar protest. He said that the entire country watched what happened. The Prime Minister described the language used as shocking, including abuses that were directed at his mother. But instead of demanding punishment, Prime Minister said that he wants to forgive what he called the misled youth of the country, adding that legal action is not the solution, that society must help guide young people into the right path.
3: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
4: विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम

0: स्वतंत्रता कहते हैं, शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर को, कि अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है, तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा। मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके, तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।
1: అలాంటి ప్రధానమంత్రిని చాలామంది ఆయన మీద మాటలంటా ఉంటే, ఆయన్ని అనకూడని మాటలంటా ఉంటే నా గుండె కదిలించేసింది, నా కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి, బాధ వచ్చింది. దేశం కోసం కష్టపడే వారికి ఇవా చివరికి మనం ఇచ్చేదేం? కొత్త తరానికి ఏం తెలుసు? ఆయన పడ్డ కష్టం, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు మన ప్రధానమంత్రి గారు. ఈరోజు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి మనకి, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు. శత్రు దేశాలు, మన అభివృద్ధికి ఈర్ష్యపడే పశ్చిమ దేశాలు, వీటన్నిటినీ తట్టుకొని ఒకవైపు విదేశాల్లో ఉండే శత్రువులతో పోరాడాలి, దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్దామంటే అంతర్గత శత్రువులతో పోరాడాలి. అలాంటి వ్యక్తికి మనం ఇవ్వగలిగేది కేవలం మేమున్నాం మీ వెంట, మీ మీద మాట పడితే అది మా మీద పడ్డట్టే, అదే మన వారికి ఇవ్వాల్సింది.
2: Well, Prime Minister's new video message saying that he has forgiven the students who abused him during the Jantar Mantar protests has triggered a full-blown political showdown. In the video, the BJP and its allies have rallied behind the remarks, with NCP calling the message an act of magnanimity and saying the country's youth need direction, not condemnation. But the opposition has hit back sharply. Congress says that the issue is not about Prime Minister Modi's pardon, but about why lakhs of students felt unheard and pushed to such an extent and anger in the first place. P. Chidambaram, on the other hand, questioned whether Prime Minister Modi would also forgive the abusive BJP trolls online. Meanwhile, Shiv Sena UBT has asked who had even sought forgiveness in the first place, insisting the students were fighting for justice.
3: Paili goshta manje vidyarthyanvarti hi vel jani handli kya Modi ji ne Amit Shah ni vidyarthyanchi ani vidyarthyancha kutumbyanchi maafi magitli pahije. याचं कारण ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ताटीला खिळे लावून मारण्यात आलं, त्यांच्यावरती छऱ्यांच्या बंदुकीने हल्ला केला गेला, अश्रुधूर सोडला गेला, एवढंच नाही तर अत्यंत वाईट पद्धतीने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले. ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते. ज्या मुलांनी नीटच्या म्हणजे काय बोल, म्हणजे आपण ऐकायला सुद्धा अंगावरती शहर येत होते, तर त्या मुलांचे भोगले आणि त्यांची मागणी काय आहे की शिक्षण पद्धतीत सुधार. साधी मागणी होती, जे तुम्ही आत्ता करताय ते तुम्ही पहिल्या दिवशी त्यांच्याशी बोलून करू शकत होतात, पण तुम्हाला अतिरेक्यांशी बोलायला पाहिजे, पाकिस्तानांशी बोलायला काय वाटत नाही. पण आपल्याच देशाचे जे भाग्यविधाते आहेत त्यांना तुम्ही झुरळ म्हणताय, त्यांना तुम्ही भरकटलेले म्हणताय, काय पुढे देश चालणार कसं?
2: Now, if you open your social media accounts during the Lok Sabha debate on the Public Examinations Amendment Bill, you might have thought that you were scrolling through an Instagram comment thread. In a historic shift in the parliamentary rhetoric, MPs across both the Treasury and the opposition benches treated traditional Hindi idioms for internet native slang. But for India's Gen Z voters, is this slang adoption building genuine connection, or is it just creating content for the feed? NDTV's Reet Kaur Sahani brings you this special report.
4: The protests at Jantar Mantar saw hundreds of Gen Z protesters raise their voices, using the platform most palatable to them. Students made reels on viral trends, raised slogans, danced, and even sang songs to make their voices be heard. The protest was arguably one of the biggest demonstrations from a generation that forms the future of the Indian electorate. Although the demonstration concluded with the resignation of the Union Education Minister, its after effects spilled inside of the Parliament. As the debate regarding paper leaks reached, we saw parliamentarians speak in a language that hadn't been spoken before. the language of the Gen Z.
5: Modi ji clocked it and provided a legislative solution.
6: Andolan kyun kiya aapne? Unko FOMO hua, FOMO. Fear of missing out.
7: Pura ye pradarshan ho raha tha bachchon ka. Rahul Gandhi ji ko pura political FOMO ho gaya.
8: Hum jo Dilulu ke bare mein bole na, aap bhi us Dilulu mein na rehna ki wo aapke saath hai.
4: Not just the parliamentarians. The Prime Minister's Instagram strategy has also become a talking point, with the Prime Minister using the platform to speak with Gen Z, whom he refers to as his friends.
9: Hi friends, aaj to man karta hai bas aapse hi baatein karu.
4: As politicians move away from the conventional parliamentary language to something more casual and relatable, NDTV asked Gen Z whether the adoption of lingos by legislators had any impact on how they would like to be spoken to.
10: Gen Z बहुत straightforward है, सबके अलग point of views होते हैं। जब तक वो communication नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेंगे चीजें और हम कैसे बता पाएंगे? एक communication तो key होता है हर चीज का।
11: Yeah, in our own way, like Gen Z slangs would be better. We'll connect them in good way if they talk to us like that only.
12: I don't think so. It is working because it after the protest they started using it as per what I know. So I feel it's more of a performative kind of thing, and they want to make them show like they are relatable to the Gen Z. So I don't think it's working.
13: I do think that they should use more of social media. It should be more like reels based or. Should be like के उनकी जो problems है उन उसके regarding बात करें और उन्हें ऐसा ना दिखाएं कि आप useless हो.
14: But over the past couple of days, we've seen a wide variety of things, from the Prime Minister releasing late night reels to Member Parliaments using Gen Z lingo inside of the Parliament. As the youth form the largest demographic in the country, one thing remains crystal clear: that to win the elections, the politicians will have to nail their campaign and win the hearts of the young Indians, or else they could risk. Sitting in the opposition. This is Reet Kaur Sahani reporting from New Delhi for NDTV.
2: Well, a major anti-terror operation is underway in Jammu and Kashmir's Kulgam after a terrorist targeted migrant workers at a brick kiln, killing two laborers from Chhattisgarh. Former Jammu and Kashmir Chief Minister has made an explosive claim about the attack and asked, why is it that the attacks happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
15: इसी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले.
16: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है.
15: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट हुड मांग रहे होते हैं.
17: ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया. इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है. पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी. लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें.
18: नहीं, क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है. लोग वहाँ से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं. ये भी हम जैसे इंसान हैं. हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है. तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए. मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए. और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है. और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, اس کو ان لوگوں کو معاوضہ دینا چاہیے وہاں کی تو دے گی دے گی. دوسرا اس کا باضابطہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. یاترا کی وجہ سے اتنی سیکورٹی ہونے کے باوجود ایسے انسیڈنٹس کیوں ہو رہے ہیں؟
19: میرا ماننا ہے کہ سمویدھانک طور پر بڑی پوسٹ کے اوپر رہنے والے پورو ہمارے مکھیہ منتری جی ان کے دھیان میں رہنا چاہیے کہ ان ایجنسیز کے کارن ہم لوگ سرکشت ہیں, یہاں کا واتاورن سرکشت ہے. دیش کے پردھان منتری نریندر بھائی مودی جی کے نیترتو میں کاریہ جو اس دیش میں ہو رہا ہے جس کے کارن ایک اچھا واتاورن بنا ہے. ہم سب جانتے ہیں اور پاکستان بھی جانتا ہے کہ ہر بار جیسے پیچھے آپریشن سندور اس نے بھگتا ہے, اس بار بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے. دیش کے پردھان منتری جی اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ ان ویروں کی جو شہادت ہے وہ کبھی بیکار نہیں جائے گی. جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں, چاہے وہ دیش ہے چاہے وہ لوگ ہیں جس نے ان گھٹنا کو جو ہے انجام دیا ہے, وہ کسی بھی طریقے سے بخشے نہیں جائے.
20: دیکھیے آتنکواد آتنکواد ہے, آتنکواد کسی کا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب ہوں یا میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ ہوں, غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینے چاہیے. پولیس کے پاس پختہ ثبوت ہیں. آتنکی حملے کے ترنت بعد ٹی آر ایف دا ریزسٹنٹ فرنٹ جو آتنکی سنگٹھن ہے اس نے ذمہ داری لی ہے. چند دن پہلے لال چوک میں جو آتنکوادی حملہ ہوا جس میں پولیس کے جوان ہیڈ کانسٹیبل عاشق قریشی صاحب کو نشانہ بنایا گیا, اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ہے. اور یہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ کو کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیے. آتنکواد آتنکواد ہے, آتنکواد نے کشمیر کو لہولوہان کیا ہے.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।

0: Hello and welcome. You're watching NETV 24/7. I'm Tanisha Vasti. Let's get you the top headlines that we're tracking at this hour. Prime Minister Modi in Mysuru sends a message to the youth, says they must be guided and that the youth is the driving force of India. National Security Advisor Ajit Doval has made an appeal to the young people of India to dedicate themselves completely to nation building, stating that a rare window of opportunity has opened in country's history that must not be allowed to slip away. Kaveri water release row has now intensified as Karnataka farmers protest in Mandya, raising Go Back Vijay slogan. Screenings of Vijay's Jananayagan are cancelled at several theatres, while Stalin has urged Chief Minister Vijay to avoid visiting Karnataka and resolve the Mekadatu issue through legal means. Farooq Abdullah has sought a probe into Kulgam terror attack and he has questioned its timing as well amid renewed demand for Jammu and Kashmir statehood. Omar, in fact, has released ex gratia of Rs 10 lakh for families of the two terror attack victims. Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha chairs a key security meeting. Heavy rains continue to lash several parts of southern Gujarat, inundating low-lying areas, disrupting daily life and prompting authorities to intensify emergency measures after the IMD had issued a red alert for 13 districts. Big boost to India-China trade ties. Historic Silk Route link via Sikkim reopens after 6 years, reviving the cross-border commerce. The development is seen as a positive step in India-China bilateral ties. Trade through Nathula first began on July 6, 2006, but was suspended during the COVID-19 pandemic. The controversy over independent MP Pappu Yadav's parliament skid on Chanda Chori has intensified with multiple complaints and FIR and protest. A complaint has been filed in Delhi by BJP MP Bansuri Swaraj. An FIR has been filed in Varanasi as well over the same skid. The Vishwa Hindu Parishad has strongly condemned the skid, accusing opposition of mocking a sacred national cause. A protest, in fact, has erupted in multiple states as we speak. The VHP workers have staged demonstrations and burnt effigy of Pappu Yadav. We also learned that Pappu Yadav has hit back at the protests that are happening, saying that the person who is protecting Sanatan is being targeted and said that he will do this 100 of times to save Sanatan. Meanwhile, what we also know is that Hyderabad Congress replicated the same skit over Chandra Chori earlier today. We have political reactions coming in on that story.
1: इन लोगों ने कभी राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए एक रुपया भी नहीं दिया, वो वहां पैसे डालने के लिए इकट्ठा होते और फिर वो साधु जिसको बनाया है वो उन पैसों को लेके भाग जाता है। ये आक्रमण भारत की सारी साधु शक्ति पर है। साधु शक्ति सड़क पर उतरेगी और पूरे भारत में इतना बड़ा प्रतिकार होगा इसका, जिसकी आंच को ये लोग झेल नहीं पाएंगे।
2: सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है। चोर को जो प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोल रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ने की और लड़ेंगे। जितना भी विरोध और गोली खाना पड़ेगा खाएंगे। जितना भी बीजेपी के लोगों को जहां जाके सना देना हो दो, हमें उसकी कोई चिंता।
0: एंड वेल, द प्राइम मिनिस्टर late last night released another video message on Instagram, this time responding to viral videos of young women abusing him during the Jantar Mantar protest. He said that the entire country watched what happened. The Prime Minister described the language used as shocking, including abuses that were directed at his mother. But instead of demanding punishment, Prime Minister said that he wants to forgive what he called the misled youth of the country, adding that legal action is not the solution, that society must help guide young people into the right path.
3: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
4: विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, शायद उनको लगता है कि ये स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा

0: आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं।
1: As politicians move away from the conventional parliamentary language to something more casual and relatable, NDTV asked Gen Z whether the adoption of lingos by legislators had any impact on how they would like to be spoken to.
2: Gen Z बहुत straightforward है, सबके अलग point of views होते हैं। जब तक वो communication नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेंगे चीजें और हम कैसे बता पाएंगे? एक communication तो key होता है हर चीज का।
3: Yeah, in our own way, like Gen Z slangs would be better. We'll connect them in good way if they talk to us like that only.
4: I don't think so. It is working because it after the protest they started using it as per what I know. So I feel it's more of a performative kind of thing, and they want to just they want to make them show like they are relatable to the Gen Z. So I don't think it's working.
5: I do think that they should use more of social media. It should be more like reels based, or should be like के उनकी जो problems है उसके regarding बात करें और उन्हें ऐसा ना दिखाए कि आप useless हो.
6: But over the past couple of days, we've seen a wide variety of things, from the Prime Minister releasing late night reels to Member Parliaments using Gen Z lingo inside of the Parliament. As the youth form the largest demographic in the country, one thing remains crystal clear. That to win the elections, the politicians will have to nail their campaign and win the hearts of the young Indians, or else they could risk sitting in the opposition. This is Reet Kaur Sahani reporting from New Delhi for NDTV.
7: Well, a major anti-terror operation is underway in Jammu and Kashmir's Kulgam after a terrorist targeted migrant workers at a brick kiln, killing two laborers from Chhattisgarh. Former Jammu and Kashmir Chief Minister has made an explosive claim about the attack and asked, why is it that the attacks happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
8: इसी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले।
9: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है,
8: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट हुड मांग रहे होते।
10: ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें।
11: नहीं, क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
12: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ का वातावरण सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है, जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है। हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है, इस बार भी भुगतना पड़ सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो देश है चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है, वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाए।
13: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट जो आतंकी संगठन है उसने जिम्मेवारी ली है। चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया, उसकी CCTV फुटेज आई है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है।

0: ये युग तुम्हारा, ये रण तुम्हारा, हर चुनौती तुम्हारी, हर शिखर तुम्हारा, तुम्ही हो भारत का स्वाभिमान।
1: हर सेक्टर, हर स्टेट, हर रीजन, हर उम्र के इनोवेटर्स ने दिया जबरदस्त प्रतिसाद। तभी तो वंदे भारतम में एप्लीकेशंस पहुंचे 25,000 के पार और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन बढ़कर हुई है 30 जुलाई। आप भी भारत के सबसे बड़े ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट से जुड़े vandebharatam.org पर रजिस्टर करें।
2: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
3: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense. What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi. Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility. This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
4: Really?
3: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
5: From the heart of the newsroom. Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Tanisha Vasti. Let's get you the top headlines that we're tracking at this hour. Prime Minister Modi in Mysuru sends a message to the youth, says they must be guided and that the youth is the driving force of India. National Security Advisor Ajit Doval has made an appeal to the young people of India to dedicate themselves completely to nation building, stating that a rare window of opportunity has opened in country's history that must not be allowed to slip away. Kaveri water release row has now intensified as Karnataka farmers protest in Mandya, raising Go Back Vijay slogan. Screenings of Vijay's Jananayagan are cancelled at several theatres, while Stalin has urged Chief Minister Vijay to avoid visiting Karnataka and resolve the Mekedatu issue through legal means. Farooq Abdullah has sought a probe into Kulgam terror attack and he has questioned its timing as well amid renewed demand for Jammu and Kashmir statehood. Omar, in fact, has released ex gratia of Rs 10 lakh for families of the two terror attack victims. Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha chairs a key security meeting. Heavy rains continue to lash several parts of southern Gujarat, inundating low-lying areas, disrupting daily life and prompting authorities to intensify emergency measures after the IMD had issued a red alert for 13 districts. Big boost to India-China trade ties. Historic Silk Route link via Sikkim reopens after 6 years, reviving the cross-border commerce. The development is seen as a positive step in India-China bilateral ties. Trade through Nathula first began on July 6, 2006, but was suspended during the COVID-19 pandemic. The controversy over independent MP Pappu Yadav's parliament skid on Chanda Chori has intensified with multiple complaints and FIR and protest. A complaint has been filed in Delhi by BJP MP Basuri Swaraj. An FIR has been filed in Varanasi as well over the same skid. The Vishwa Hindu Parishad has strongly condemned the skid, accusing opposition of mocking a sacred national cause. A protest, in fact, has erupted in multiple states as we speak. The VHP workers have staged demonstrations and burnt effigy of Pappu Yadav. We also learned that Pappu Yadav has hit back at the protests that are happening, saying that the person who is protecting Sanatan is being targeted and said that he will do this 100 times to save Sanatan. Meanwhile, what we also know is that Hyderabad Congress replicated the same skit over Chandra Chori earlier today. We have political reactions coming in on that story.
6: इन लोगों ने कभी राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए एक रुपया भी नहीं दिया, वो वहां पैसे डालने के लिए इकट्ठा होते, और फिर वो साधु जिसको बनाया है वो उन पैसों को लेके भाग जाता है। ये आक्रमण भारत की सारी साधु शक्ति पर है। साधु शक्ति सड़क पर उतरेगी और पूरे भारत में इतना बड़ा प्रतिकार होगा इसका, जिसकी आंच को ये लोग झेल नहीं पाएंगे।
4: सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है। चोर को जो प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोल रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ने की और लड़ेंगे। जितना भी विरोध और गोली खाना पड़ेगा खाएंगे। जितना भी बीजेपी के लोगों को जहां जाके सना देना हो दो, हमें उसकी कोई चिंता।
5: एंड वेल, द प्राइम मिनिस्टर late last night released another video message on Instagram, this time responding to viral videos of young women abusing him during the Jantar Mantar protest. He said that the entire country watched what happened. The Prime Minister described the language used as shocking, including abuses that were directed at his mother. But instead of demanding punishment, Prime Minister said that he wants to forgive what he called the misled youth of the country, adding that legal action is not the solution, that society must help guide young people into the right path.
7: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
8: विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर वो, कि अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है, तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा। मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके, तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।
9: అలాంటి ప్రధానమంత్రిని చాలామంది ఆయన మీద మాట్లాడుతూ ఉంటే, ఆయన్ని అనకూడని మాట్లాడుతూ ఉంటే నా గుండె కదిలించేసింది, నా కన్నీళ్ళు వచ్చినాయి, బాధ వచ్చింది. దేశం కోసం కష్టపడే వారికి ఇవా చివరికి మనం ఇచ్చేదేని? కొత్త తరానికి ఏం తెలుసు? ఆయన పడ్డ కష్టం, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు మన ప్రధానమంత్రి గారు. ఈరోజు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి మనకి, ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదు. శత్రు దేశాలు, మన అభివృద్ధికి ఈర్ష్యపడే పశ్చిమ దేశాలు, వీటన్నిటినీ తట్టుకొని ఒకవైపు విదేశాల్లో ఉండే శత్రువులతో పోరాడాలి, దేశాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్దామంటే అంతర్గత శత్రువులతో పోరాడాలి. అలాంటి వ్యక్తికి మనం ఇవ్వగలిగేది కేవలం మేమున్నాం మీ వెంట, మీ మీద మాట పడితే అది మా మీద పడ్డట్టే, అదే మన వారికి ఇవ్వాల్సింది.
5: Well, Prime Minister's new video message saying that he has forgiven the students who abused him during the Jantar Mantar protests has triggered a full-blown political showdown. In the video, the BJP and its allies have rallied behind the remarks, with NCP calling the message an act of magnanimity and saying the country's youth need direction, not condemnation. But the opposition has hit back sharply. Congress says that the issue is not about Prime Minister Modi's pardon, but about why lakhs of students felt unheard and pushed to such an extent and anger in the first place. P. Chidambaram, on the other hand, questioned whether Prime Minister Modi would also forgive the abusive BJP trolls online. Meanwhile, Shiv Sena UBT has asked who had even sought forgiveness in the first place, insisting the students were fighting for justice.
10: Pahili goshta manje vidyarthyanvarti hi vel jani andli kya Modi ji ne Amit Shah ni vidyarthyanchi ani vidyarthyancha kutumbyanchi maafi magitli pahije. याचं कारण ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ताटीला खिळे लावून मारण्यात आलं, त्यांच्यावरती छऱ्यांच्या बंदुकीने हल्ला केला गेला, अश्रुधूर सोडला गेला, एवढंच नाही तर अत्यंत वाईट पद्धतीने पुरुष पोलिसांकडनं त्यांचे कपडे फाडले गेले. ज्या पद्धतीने तो व्हिडिओ मी पाहिला, एक ती मुलगी पुढे जाते आणि तो पोलीस पाठवून कसं तो मला बोलायला सुद्धा लाज वाटते. ज्या मुलांनी नीटच्या म्हणजे काय बोल म्हणजे आपण ऐकायला सुद्धा अंगावरती शहर येत होते, तर त्या मुलांचे भोगले आणि त्यांची मागणी काय आहे की शिक्षण पद्धतीत सुधार. साधी मागणी होती, जे तुम्ही आत्ता करताय ते तुम्ही पहिल्या दिवशी त्यांच्याशी बोलून करू शकत होतात, पण तुम्हाला अतिरेक्यांशी बोलायला पाहिजे, पाकिस्तानांशी बोलायला काय वाटत नाही. पण आपल्याच देशाचे जे भाग्यविधाते आहेत त्यांना तुम्ही झुरळ म्हणताय, त्यांना तुम्ही भरकटलेले म्हणताय, काय पुढे देश चालणार कसं?
5: Now, if you open your social media accounts during the Lok Sabha debate on the Public Examinations Amendment Bill, you might have thought that you were scrolling through an Instagram comment thread. In a historic shift in the parliamentary rhetoric, MPs across both the Treasury and the opposition benches treated traditional Hindi idioms for internet native slang. But for India's Gen Z voters, is this slang adoption building genuine connection, or is it just creating content for the feed? NDTV's Reet Kaur Sahani brings you this special report.
11: The protests at Jantar Mantar saw hundreds of Gen Z protesters raise their voices, using the platform most palatable to them. Students made reels on viral trends, raised slogans, danced, and even sang songs to make their voices be heard. The protest was arguably one of the biggest demonstrations from a generation that forms the future of the Indian electorate. Although the demonstration concluded with the resignation of the Union Education Minister, its after effects spilled inside of the Parliament. As the debate regarding paper leaks reached, we saw parliamentarians speak in a language that hadn't been spoken before. the language of the Gen Z.
12: Modi ji clocked it and provided a legislative solution.
13: Andolan kyun kiya aapne? Unko FOMO hua, FOMO. Fear of missing out.
14: Pura ye pradarshan ho raha tha bachchon ka. राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया।
15: हम जो डिलुलु के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलु में ना रहना कि वो आपके साथ है।
11: Not just the parliamentarians, the Prime Minister's Instagram strategy has also become a talking point, with the Prime Minister using the platform to speak with Gen Z, whom he refers to as his friends.
7: Hi friends, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं।
11: As politicians move away from the conventional parliamentary language to something more casual and relatable, NDTV asked Gen Z whether the adoption of lingos by legislators had any impact on how they would like to be spoken to.
16: Gen Z बहुत straightforward है, सबके अलग point of views होते हैं। जब तक वो communication नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेंगे चीजें और हम कैसे बता पाएंगे? एक communication तो key होता है हर चीज का।
17: Yeah, in our own way, like Gen Z slangs would be better. We'll connect them in good way if they talk to us like that only.
18: I don't think so. It is working because it after the protest they started using it as per what I know. So I feel it's more of a performative kind of thing, and they want to make them show like they are relatable to the Gen Z. So I don't think it's working.
19: I do think that they should use more of social media. It should be more like reels based, or should be like के उनकी जो problems है उसके regarding बात करें और उन्हें ऐसा ना दिखाए कि आप useless हो.
20: But over the past couple of days, we've seen a wide variety of things, from the Prime Minister releasing late night reels to Member Parliaments using Gen Z lingo inside of the Parliament. As the youth form the largest demographic in the country, one thing remains crystal clear. That to win the elections, the politicians will have to nail their campaign and win the hearts of the young Indians, or else they could risk sitting in the opposition. This is Reet Kaur Sahani reporting from New Delhi for NDTV.
5: Well, a major anti-terror operation is underway in Jammu and Kashmir's Kulgam after a terrorist targeted migrant workers at a brick kiln, killing two laborers from Chhattisgarh. Former Jammu and Kashmir Chief Minister has made an explosive claim about the attack and asked, why is it that the attacks happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
21: इसी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले।
22: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है,
21: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट रोड मांग रहे होते।
23: ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें।
24: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहां की तो देगी देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
0: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ का वातावरण सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है, जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है। हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है, इस बार भी भुगतना पड़ सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी, और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो देश है चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है, वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाएंगे।
1: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो आतंकी संगठन है, उसने जिम्मेवारी ली है। चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया, उसकी CCTV फुटेज आई है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है।

0: करना चाहूंगा ये मेडल।
1: द सिल्वर लाइनिंग टू द इवनिंग्स एफर्ट केम विद अनदर मेडल फ्रॉम यामिनी मौर्या। शी लॉस्ट गोल्ड बट वन सिल्वर इन 57 किलोग्राम कैटेगरी टू एंड इंडियाज रिमार्केबल जूडो कैंपेन ऑन द पेनल्टिमेट डे ऑफ कॉम्पिटिशंस एट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। रीका रॉय फॉर NDTV।
2: With that, it's time for us to slip into a short break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.

की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा। मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा

0: टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सबके अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। जब तक वो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेंगे चीज़ें और हम कैसे बता पाएंगे। एक कम्युनिकेशन तो की होता है हर चीज़ का।
1: या इन आर ओन वे, लाइक जेन जी स्लैंग्स वुड बी बेटर, वी कनेक्ट देम इन गुड वे इफ दे टॉक टू अस लाइक दैट ओनली।
2: I don't think so. It is working because it after the protest they started using it as per what I know. So I feel it's more of a performative kind of thing, and they want to just they want to make them show like they are relatable to the Gen Z. So I don't think it's working.
3: I do think that they should use more of social media. It should be more like reels based or. शुड बी लाइक के उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग बात करें और उन्हें ऐसा ना दिखाएं कि आप यूजलेस हो।
0: But over the past couple of days we've seen a wide variety of things, from the Prime Minister releasing late night reels to member parliaments using Gen Z lingo inside of the parliament. As the youth form the largest demographic in the country, one thing remains crystal clear, that to win the elections the politicians will have to nail their campaign and win the hearts of the young Indians, or else they could risk sitting in the opposition. This is Reet Kaur Sahani reporting from New Delhi for NDTV.
4: Well, a major anti-terror operation is underway in Jammu and Kashmir's Kulgam after a terrorist targeted migrant workers at a brick kiln, killing two laborers from Chhattisgarh. Former Jammu and Kashmir Chief Minister has made an explosive claim about the attack and asked, why is it that the attacks happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
5: इसी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है, मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट रोड मांग रहे होते।
6: ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें।
7: नहीं, क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
8: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ का वातावरण सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है, जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है। हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है, इस बार भी भुगतना पड़ सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी, और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो देश है, चाहे वो लोग हैं जिसने

0: इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाए।
1: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट जो आतंकी संगठन है उसने जिम्मेवारी ली है। चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया, उसकी CCTV फुटेज आई है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है।

0: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
1: Really?
0: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am
2: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Tanisha Vasti. Let's get you the top headlines that we're tracking at this hour. Prime Minister Modi in Mysuru sends a message to the youth, says they must be guided and that the youth is the driving force of India. National Security Advisor Ajit Doval has made an appeal to the young people of India to dedicate themselves completely to nation building, stating that a rare window of opportunity has opened in country's history that must not be allowed to slip away. Kaveri water release row has now intensified as Karnataka farmers protest in Mandya, raising Go Back Vijay slogan. Screenings of Vijay's Jananayagan are cancelled at several theatres, while Stalin has urged Chief Minister Vijay to avoid visiting Karnataka and resolve the Mekedatu issue through legal means. Farooq Abdullah has sought a probe into Kulgam terror attack and he has questioned its timing as well amid renewed demand for Jammu and Kashmir statehood. Omar, in fact, has released ex gratia of Rs 10 lakh for families of the two terror attack victims. Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha chairs a key security meeting. Heavy rains continue to lash several parts of southern Gujarat, inundating low-lying areas, disrupting daily life and prompting authorities to intensify emergency measures after the IMD had issued a red alert for 13 districts. Big boost to India-China trade ties. Historic Silk Route link via Sikkim reopens after 6 years, reviving the cross-border commerce. The development is seen as a positive step in India-China bilateral ties. Trade through Nathula first began on July 6, 2006, but was suspended during the COVID-19 pandemic. The controversy over independent MP Pappu Yadav's parliament skid on Chanda Chori has intensified with multiple complaints and FIR and protest. A complaint has been filed in Delhi by BJP MP Basuri Swaraj. An FIR has been filed in Varanasi as well over the same skid. The Vishwa Hindu Parishad has strongly condemned the skid, accusing opposition of mocking a sacred national cause. A protest, in fact, has erupted in multiple states as we speak. The VHP workers have staged demonstrations and burnt effigy of Pappu Yadav. We also learned that Pappu Yadav has hit back at the protests that are happening, saying that the person who is protecting Sanatan is being targeted and said that he will do this 100 times to save Sanatan. Meanwhile, what we also know is that Hyderabad Congress replicated the same skit over Chandra Chori earlier today. We have political reactions coming in on that story.
3: इन लोगों ने कभी राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए एक रुपया भी नहीं दिया, वो वहां पैसे डालने के लिए इकट्ठा होते, और फिर वो साधु जिसको बनाया है वो उन पैसों को लेके भाग जाता है। ये आक्रमण भारत की सारी साधु शक्ति पर है। साधु शक्ति सड़क पर उतरेगी और पूरे भारत में इतना बड़ा प्रतिकार होगा इसका, जिसकी आंच को ये लोग झेल नहीं पाएंगे।
4: सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है। चोर को जो प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोल रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ने की और लड़ेंगे। जितना भी विरोध और गोली खाना पड़ेगा खाएंगे। जितना भी बीजेपी के लोगों को जहां जाके सना देना हो दो, हमें उसकी कोई चिंता।
2: And well, the Prime Minister late last night released another video message on Instagram, this time responding to viral videos of young women abusing him during the Jantar Mantar protest. He said that the entire country watched what happened. The Prime Minister described the language used as shocking, including abuses that were directed at his mother. But instead of demanding punishment, Prime Minister said that he wants to forgive what he called the misled youth of the country, adding that legal action is not the solution, that society must help guide young people into the right path.
1: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है, कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
5: विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है, स्वतंत्रता ये नहीं थी। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हर वो, कि अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है, तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा। मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके, तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।
6: अलांटी प्रधानमंत्री चाला मंदी आयन मीद माटलंटा उंटे, आयन्नि अनकूडनि माटलंटा उंटे ना गुंडे कदिलिंचेसिंदि, ना कन्नीळ्ळु वच्चिनायि, बाध वच्चिंदि। దేశం కోసం కష్టపడే వారికి ఇవా చివరికి మనం ఇచ్చేదేను?

0: नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेंगे चीज़ें और हम कैसे बता पाएंगे। एक कम्युनिकेशन तो की होता है हर चीज़ का।
1: या इन आर ओन वे लाइक जेन ज़ी स्लैंग्स वुड बी बेटर, वी कनेक्ट देम इन गुड वे इफ दे टॉक टू अस लाइक दैट ओनली।
2: I don't think so. It is working because it after the protest they started using it as per what I know. So I feel they it's more of a performative kind of thing and they want to just they want to make them show like they are relatable to the Gen Z. So I don't think it's working.
3: I do think that they should use more of social media. It should be more like reels based or शुड बी लाइक के उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग बात करें और उन्हें ऐसा ना दिखाए कि आप यूजलेस हो।
0: But over the past couple of days we've seen a wide variety of things, from the Prime Minister releasing late night reels to member parliaments using Gen Z lingo inside of the parliament. As the youth form the largest demographic in the country, one thing remains crystal clear, that to win the elections the politicians will have to nail their campaign and win the hearts of the young Indians, or else they could risk sitting in the opposition. This is Reet Kaur Sahani reporting from New Delhi for NDTV.
4: Well, a major anti-terror operation is underway in Jammu and Kashmir's Kulgam after a terrorist targeted migrant workers at a brick kiln, killing two laborers from Chhattisgarh. Former Jammu and Kashmir Chief Minister has made an explosive claim about the attack and asked, why is it that the attacks happen only when the restoration of statehood is demanded? Meanwhile, security forces have cordoned off the area and launched an extensive search operation to track down the attackers. Investigators suspect that the involvement of Pakistani-backed terror outfit Lashkar-e-Toyba with operatives Latif Bhatt and Waris are emerging as the key suspects. Meanwhile, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has strongly condemned the attack and announced an ex gratia of rupees 10 lakh each for the families of the victims, assuring that those behind the killings will be brought to justice.
5: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले।
6: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है।
5: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट हुड मांग रहे होते।
7: ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें।
8: मैं क्या करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लोग वहां से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको, मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि एक तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वहाँ की तो देगी। दूसरा, इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यात्रा की वजह से इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं?
9: मेरा मानना है कि संवैधानिक तौर पर बड़ी पोस्ट के ऊपर रहने वाले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि इन एजेंसीज के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, यहाँ का वातावरण सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जो इस देश में हो रहा है, जिसके कारण एक अच्छा वातावरण बना है। हम सब जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है कि हर बार जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर उसने भुगता है, इस बार भी भुगतना पड़ सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी, और मेरा तो ये मानना है कि उन वीरों की जो शहादत है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे वो देश है, चाहे वो लोग हैं जिसने इन घटनाओं को जो है अंजाम दिया है, वो किसी भी तरीके से बख्शे नहीं जाएंगे।
10: देखिए, आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद किसी का हमदर्द नहीं हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। आतंकी हमले के तुरंत बाद TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो आतंकी संगठन है, उसने जिम्मेवारी ली है। चंद दिन पहले लाल चौक में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल आशिक कुरैशी साहब को निशाना बनाया गया, उसकी CCTV फुटेज आई है। और ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद है, आतंकवाद ने कश्मीर को लहूलुहान किया है।